0: सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में

0: जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने ये घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के पांचवे और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में

0: जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति

भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बांसकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सनी भाई, आपसे कुछ ही पहले में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पल में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम तरंग।

सैनिक भाइयों, 1:40 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सनी भाई, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, डर फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की युगल आवाज़ों में गुरु फिल्म से गीत।

श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में अभी आपने सुना गुरु फिल्म का ये गीत। सनी भाई, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, गुलाम फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है फिल्म रेडी का यह गाना और इस गीत को गाया है के और तुलसी कुमार ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर राग रंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

के स्वर छाया 1:40 पर प्रादेशिक संगीत 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले। इसी के साथ दोपहर 3 बजे समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

सैनिक भाइयों, फिल्मी नगमे कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में खिलौना फिल्म से ये गीत।

0: सैनिक भाइयों, आप लोग सुन रहे हैं फिल्मी नगमे कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं रेजिया सुल्तान फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज में।
1: चूम करे रात सुलाए

सैनिक भाइयों, फिल्मी नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, उमराव जान फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे, मीडियम एफ 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से हर दिल में खास जगह बना ली थी, ऋतिक रोशन। साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि रातों रात पूरे देश के चहेते बन गए। उनका शानदार लुक, लाजवाब डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस आज भी उतना ही ताजा लगता है। आइए सुनते हैं ये गीत।

सनी भाइयों, तरंग कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन के बारे में, और अभी आपने सुना उनके अभिनीत फिल्म कहो ना प्यार है से ये गीत। पर्दे पर चमकने वाले इस सितारे की असली कहानी बेहद प्रेरणादायक है। बचपन में बोलने में आने वाली रुकावट और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ जैसी मुश्किलों से लड़कर वे आगे बढ़े। जब डॉक्टरों ने डांस करने से भी मना कर दिया था, तब उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों से हर नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिया।

सनिक भाइयों, तारंग कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन के बारे में। और अभी आपने सुना क्रिस फिल्म का, ऋतिक रोशन अभिनीत इस क्रिस फिल्म का, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत। ऋतिक रोशन सिर्फ लुक्स और डांस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने अभिनय से हर बार चौंकाया। कोई मिल गया के सीधे साधे रोहित से लेकर जोधा अकबर के शहंशाह और सुपर 30 के मास्टर आनंद कुमार तक उन्होंने हर किरदार को पूरी तरह शिद्दत से जिया।

जब भी भारतीय सिनेमा में बेहतरीन डांस और जबरदस्त एक्शन की बात होती है, ऋतिक का नाम सबसे पहले आता है। धूम 2 और वार का उनका स्टाइल, या फिर बच्चों का पसंदीदा सुपर हीरो क्रिस, उन्होंने हर पीढ़ी के लोगों के दिलों पर राज किया है।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। आज हमने लिया है कुछ गुजराती गीत। आइए सुनते हैं पहला गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम और आज आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। अभी आपने सुना अवसर एल्बम से ये गजल मनहर उदास की आवाज़ में।

मधुर लगने गीतों एल्बम से अभी आपने ये गीत सुना। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं अवसर एल्बम से ये गीत मनहर उदास की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति

0: की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA

0: को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं

0: भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेब 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रेत लड़ी। आइए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं।

सैनिक भाइयों, प्रेत लड़ी कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, वजीर फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं हमराज फिल्म से गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

सनी भाई, अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में जाने मन फिल्म से ये गीत।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

सनी भाइयों, अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को गुलाम फिल्म के इस गीत में। अब आइए सुनते हैं प्रीत लड़ी कार्यक्रम का अंतिम गीत, के और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में, खट्टा मीठा फिल्म से।

इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम प्रेत लड़ी यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बांसकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, जो बढ़ती उम्र के साथ एक आम समस्या है। यदि आप भी हैं इस समस्या से परेशान, तो क्या है समाधान, जानकारी देंगे हमारे आज के दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप दोनों को।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि अगर आप हमारे दोनों विशेषज्ञों से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए स्टूडियो के नंबर है 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों के स्वागत के साथ ही अब आज का प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो ये समस्या है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, तो ये किस उम्र में होने वाले फ्रैक्चर को कहते हैं?
2: जी, तो अनुराधा जी, मेरे श्रोताओं को मेरा बड़ा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहली तो ये है कि जेरियाट्रिक का मतलब है वृद्धावस्था। तो जब भी हमारे बॉडी में चेंजेस ओल्ड एज के होते हैं, जैसे लेडीज में तो मेनोपॉज होता है तो पता रहता है, जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। आदमियों में ऐसी कोई ड्रामेटिक चीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके भी बॉडी में मेल हार्मोन कम हो जाते हैं। तो आप मोटे तौर पे अगर कहें तो मुझे सिंपल कहना हो तो जो पोस्ट रिटायरमेंट है कोई, तो उसको हम जेरियाट्रिक कह सकते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन भी बदल रही है। लेकिन जब आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं, जब आपको चलने फिरने में मुश्किल है, जब आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ ट्रेमर्स, जब आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं और आपको गिरने का खतरा रहता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, सुनने में कमजोर हो जाता है, तो जो गिरने से जो फ्रैक्चर होते हैं उनको मोटे तौर पर हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोल सकते हैं। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोटिक्स में होते हैं, लेडीज ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होती है। तो ये जो वृद्धावस्था में होने वाले, गिरने से होने वाले कूल्हे के फ्रैक्चर को हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोलते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये अभी डॉक्टर राजेश सर ने हमें बताया है, प्रसून सर से सवाल करेंगे, आगे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जीरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर के बारे में। यदि आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर एक बार और आपको बता देते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342108001122342108002। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि बढ़ती उम्र की हम बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एज में क्यों बढ़ जाता है हिप फ्रैक्चर का खतरा?
1: जी अनुराध जी, पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। क्योंकि देखो, ओल्ड एज कुछ एक हद तक पुराने गाड़ी जैसे है। सो हड्डी भी वीक होती है, मसल भी वीक होती है। मसल के बारे में हम बोलते हैं इवन मसल वीकनेस स्टार्ट्स आफ्टर 30 इटसेल्फ, बट जैसे कि सर ने कहा कि 65 के बाद हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन काउंट करते हैं, बट इट इज मोर ऑफ फंक्शनल एज, नॉट कैलेंडर एज, इसके ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं। तो देखा गया कि 60 के बाद हर डिकेड हम ऑलमोस्ट 10% के करीब मसल लॉस करते हैं। तो जो जितना भी हड्डी हमारे शरीर में है, वो हड्डी को पकड़ के रखे मसल। सो उम्र के साथ साथ जो मसल वीकनेस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि थोड़ा सा सॉफ्ट फॉल से भी उनका फ्रैक्चर होने का चांस होता है, चाहे वो हिप हो, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे कोलिस फ्रैक्चर जो हाथ में होता है वो होता है। उसके साथ साथ इनका जो मोबिलिटी है, उम्र के साथ साथ मोबिलिटी भी कम हो जाए। तो मसल को, मसल का एक है, मसल का खाना है प्रोटीन, मसल का मोबिलिटी है एक्सरसाइज, जितना हम करें। तो उम्र के साथ साथ हमारा मोबिलिटी भी कम होता है। प्लस इसके साथ आप देखेंगे तो फॉल के कारण में हेड टू फुट हर जगह पे, चाहे वो नर्वस सिस्टम में थोड़ा वीकनेस हो जाए, बीट पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया जो न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, विजन के बाद सर ने कहा, हियरिंग, देखा गया स्टडी में कि हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए, क्योंकि हियरिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारा जो कॉक्लियर सिस्टम है वो बैलेंस को भी बना के रखते हैं। तो उम्र के साथ साथ देखा गया कि मसल वीकनेस के साथ साथ बैलेंस भी उनका बिगड़ जाती है। इसके साथ साथ आपका कार्डियक रिदम डिसऑर्डर भी होने का चांस, हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट पंप करने का समय कम हो जाती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली इवन स्टडी में देखा गया कि आपका फुट प्रॉब्लम भी कैन बी कॉज ऑफ फॉल, कि आप कौन सा जूता पहन रहे हो,
0: जी,
1: वो भी एक कारण हो सकता है। ये सब इंटरनल हुआ।

0: बट इसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट इज आई विल से एक्सटर्नल कॉज, चाहे आपका बाथरूम स्लीपर ही हो या घर में इधर उधर लूज फिटेड वेयर हो या कारपेट एंड टू एंड नहीं रखा हो, आपका विजन कम हो, लाइट नहीं जल रहा है, बाथरूम में गया आप गिर गए, तो रात को अंधेरे में बाथरूम जाना और उसके ऊपर दवाई का असर काफी ज्यादा होता है. मेनी ऑफ द पीपल दे टेक स्लीपिंग पिल, कोई दवाई, कोई प्रेशर का दवाई जिसे हम डायरेटिक्स बोलते हैं, उसके कारण आप कोई उठे बैठे है सडनली उठा तो चक्कर आएगा. सो बिस्तर से लेटे चक्कर आया गिर गया, बाथरूम में गए कमोड में बैठे उठने गया चक्कर आया गिर गया. ये सारे फैक्टर सीनियर सिटीजन में होती है जिसके कारण दे आर मोर प्रोन फॉर सो नॉट ओनली वीकनेस ऑफ देयर ओन बॉडी सिस्टम ताकि एनवायरनमेंट भी काफी हद तक उनको. एंड इसीलिए WHO एक नया कंसेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट, चाहे वो शहर हो, कुछ कुछ शहर भी दुनिया में बन गया जो कि एज फ्रेंडली है, चाहे आपका घर हो, चाहे हर जगह में एज के मतलब दिमाग में रखते हुए एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करना चाहिए.
1: जी वो कैसे होगा आपसे आगे जानेंगे. फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है. जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताए.
2: हेलो
1: जी सर, अपना शुभ नाम बताएं.
2: आपको मेरी आवाज विजय कुमार बोल रहा हूँ रोनी से.
1: जी विजय कुमार जी, क्या सवाल है आपका, हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं, बताएं.
2: मेरी एज 84 है
1: जी.
2: अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई खास, एक लेफ्ट टांग के ऊपर एक सॉफ्ट गांठी हो गई है और मुझे पूछा लीवर की साइड में होता है बॉडी के.
1: जी तो क्या सवाल क्या है आपका, जो आपकी दिक्कत किस तरीके की आप चाह रहे हैं समाधान डॉक्टर साहब से.
2: लेफ्ट साइड
3: देखिए अगर हाँ
2: गांठ हो गई है.
3: हाँ विजय कुमार जी, जो गांठ है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों को उसकी एग्जामिन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उससे काफी उसके बारे में पता लगता है और फिर एक सुई से कैफेनेसी नाम की एक जांच करके पानी निकाल के उसमें से या सेल निकाल के उसके नतीजे पे पहुंचा जा सकता है. ये कुछ बिल्कुल हार्मलेस चीज, फैट जैसी चीज भी हो सकती है, उससे कुछ ज्यादा सिंपल ना हो ऐसी चीज भी हो सकती है. तो हमारा परामर्श ये है कि आप एक डॉक्टर को मिलके दिखा लें और अगर कुछ परेशानी होगी तो डॉक्टर उसको निकाल देंगे.
1: जी तो इनकी समस्या का समाधान हो गया. राजेश सर आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कितना सीरियस होता है ये हिप फ्रैक्चर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं.
3: अनुराधा जी, इतना सीरियस होता है कि हमारे एक ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक सर्जन होते थे सर एस्ले कूपर, उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया में आते हैं श्रोणी या पेल्विस से और जाते हैं कूल्हे से. मतलब ये एक डेथ सेंटेंस है और उस उम्र में मृत्यु का, बुजुर्गों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है. बहुत बार रिश्तेदारों को समझ में नहीं आती है, बोलते बाथरूम में जरा सा स्लिप हुए थे, जरा सा गिर गए, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस हड्डी का टूटना जरा से गिरने से, अब जवानी में गिरते हैं लोग, फिसलते गिरते, कूल्हा तो नहीं टूटता है, लेकिन जो उस उम्र में थोड़ा सा हल्का सा फिसल के हल्की सी चोट लगने से कूल्हा गिरना टूटना जो है एक प्रकार से आपका शरीर अब आपका साथ छोड़ रहा है उसकी भी निशानी हो सकती है. कई बार उसमें हमारे पास पेशेंट आता है तो उनका ब्लड शुगर 600 होता है, ब्लड प्रेशर 200/100 होता है और कई बार किडनी काम नहीं कर रही होती है. तो कई बार ये पूरी बॉडी का फिजियोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं जो उसकी फंक्शनिंग है उसका फेलियर भी हो सकता है. और ज़्यादातर जगह ये दिखाया जा गया है कि एक साल तक इसमें मृत्यु दर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है. अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी 20-25% पेशेंट एक साल तक नहीं जी पाते, जबकि उनके रोगी ज़्यादा स्वस्थ होते हैं हमारे लोगों से, उनके वृद्ध ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और वहाँ मेडिकल केयर भी तुरंत मिल जाती है और अच्छे से हो जाता है, तब भी उनमें से 4 में से 1 व्यक्ति अपनी जान एक साल में खो बैठता है. और अगर फ्रैक्चर ठीक ठाक भी फिक्स हो गया और जल्दी से खड़े कर दिया, जल्दी से चला दिया, तो भी मृत्यु पे का खतरा जो है कम से कम 1 साल तक लगातार बना रहता है, इसलिए इसको इतनी सीरियस ले लिया जाता है.
1: जी तो कह सकते हैं कि ये संकेत होता है कि आप पूरी तरह से आगाह हो जाएं अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि कहीं इस तरीके की समस्या हो सकती है. तो जैसा कि अभी प्रसून सर ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंडली थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट करें और उस तरह की जीवनचर्या रखें कि हमें पता हो कि हमें रात में उठना है, हमारे बुजुर्ग रात में उठते हैं तो किस तरीके की उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए. अब अगला सवाल मैं चाहूँगी प्रसून

0: सर आपसे कि चलिए यहाँ पर जो हम जान रहे हैं किस तरीके से समस्या होती है, लेकिन इसमें ऑर्थोपेडिक का रोल होता है, लेकिन आपका क्या रोल होता है सर, वो भी जानना
1: ये बड़ा
0: चाहूंगी।
1: इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराधा, शायद काफी लोगों को भी पता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मैं आपको बताऊं, एक तो हुआ कि फ्रैक्चर हो का मतलब गिरने का कंसिक्वेंस है फ्रैक्चर। आप नोटिस करेंगे, हम नोटिस देखते हैं कि तीन चीजें होती है, कोई सीनियर सिटीजन अगर गिरते हैं उनको तीन चीजें हो सकती है, या तो कूल्हे का हड्डी टूटा, या तो हेड इंजरी हुआ फिर अनकॉन्सियस जैसे हो जाता, या तो तीसरा चीज कुछ नहीं हुआ। So, ये तीनों चीज तीनों ही खतरनाक है। मैं तीसरा चीज को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये पहले दोनों में तो आप मेडिकल अटेंशन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन कुछ ना कुछ करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है करेंगे। तीसरा जो चीज है उसके बाद क्या होता है, उनमें एक डर पैदा हो जाता है, मैं गिर गया, इसे हम फियर ऑफ फॉल बोलते हैं। सो फॉल को हम जेरियाट्रिक मेडिसिन में जेरियाट्रिक सिंड्रोम कहते हैं। हर 6 में से 1 लोग रोज गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, और एक बार गिरना मतलब आप अपने मन में जो डर आ गया, फिर उनका चलने का गति कम हो जाता
0: जी,
1: है, स्टडी में
0: आत्मविश्वास खत्म हो
1: आत्मविश्वास
0: जाता
1: कम
0: है
1: होता है।
0: जी।
1: तो स्टडी में देखा गया गेट स्पीड इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक योर हार्ट हेल्थ, कितना तेजी से हम चल रहे हैं। तो उम्र के साथ साथ चलने का स्पीड भी कम हो जाती है, बैलेंस कम हो जाती है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक बार आपका मोबिलिटी कम हो जाती है, देन देयर इज ए विशियस साइकिल। मोबिलिटी कम होगा तो खाना कम लगेगा, खाना कम लगेगी तो खाना हजम कम होगी, मसल को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो ये धीरे धीरे करके एक सिचुएशन होता है जिसे हम फ्रेलिटी बोलते हैं एल्डरली में, तो नाजुक हो जाते। तो ये रहा, तो इसलिए हम जेरियाट्रिक ओपीडी में हम बोलते हैं कंप्रिहेंसिव जेरियाट्रिक हस्बैंड। कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, जैसे सर भी हमारे पास भेजते हैं कि उनका मेमोरी, मूड, मसल, फॉल रिस्क, हम फॉल रिस्क लोगों का असेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चेयर में 3 मीटर की दूरी में हम चेयर रखते हैं, उठ के गया और वापस आया, इसमें अगर 14 सेकंड से ऊपर होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो आपको गिरने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए आप मसल के ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो, मेडिसिन पे ध्यान दो। मेडिसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लोग 10-10 15-15 गोली खाते हैं, तो हमारा एक काम होता है गोली कम करके मिनिमम और एसेंशियल गोली देना। दूसरा चीज होता है जब ऑपरेशन होता है तो यूजुअली सीनियर सिटीजन, जैसे मैं बोला ये तो पुरानी गाड़ी है, इसमें सिर्फ चैसिस खराब हुआ है, टायर खराब हुआ है, ऐसा नहीं है, काफी चीजें एक साथ होती है, प्रेशर, शुगर, डेलीरियम, उनका तो प्रेजेंटेशन ही डेलीरियम होता है। फिर ऑपरेशन के बाद सोडियम घट जाता है तो भी डिलीरियम होता है। तो सर के गाइडेंस में हम लोग एम्स में, सर जब जेएन सेंटर का, ट्रॉमा सेंटर का चीफ थे, तो हम लोग वहां पे कुछ डेडिकेटेड बेड एम्स में क्रिएट किए थे जिसे ऑर्थो जेरियाट्रिक्स कहते थे। तो सर लोग ओटी करते थे, हम लोग आगे पीछे मेडिकल मैनेज करते थे, तो इससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और जल्दी रिकवरी होता है।
0: बहुत ही अच्छी सूचना आपने यहाँ पर लोगों को दी है कि किस तरह से हम पहले ही अवेयर हो जाएं तो समस्या ना आए। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बात है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, और साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप सबके सवालों का जो समाधान है, जो समस्या है, उसका निदान कर रहे हैं हमारे दोनों विशेषज्ञ। हमारे पास अनूप कुमार जी रांची से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 54 है और ये बीपी शुगर के पेशेंट हैं लगभग 37 सालों से। ये बता रहे हैं कि इनकी स्टिफनेस है बोन्स में और इनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे इनको जो आराम है वो मिल सके और क्या इनको प्रिकॉशंस बरतने चाहिए।
2: तो अनूप जी, आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को रूल आउट करना चाहिए। उसमें अक्सर युवाओं में होता है, पुरुषों में होता है, सो के उठ के अकड़न होती है, बहुत सारे शरीर के जोड़ इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि अगर किसी युवा व्यक्ति को, पुरुष को, 6 सप्ताह से ज़्यादा पीठ में दर्द और अकड़न रहती है तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। तो मेरा आपसे परामर्श ये है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुरंत मिलें और उनको दिखा के जो भी एक्सरे और खून की जांच, हम लोग HLA-B27 टेस्ट करते हैं, एक जेनेटिक टेस्ट है, और उससे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आपको ये गठिया है कि नहीं, और उसके हिसाब से उसका आपका इलाज किया जा सकता है।
1: जी राजेश सर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कैसे पता चले, क्योंकि ये होता है कि कभी स्लिप कर गया कोई भी हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है, वो स्लिप कर गया, तो कैसे पता चले कि जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर ही है।
2: तो गिरते ही सबसे पहली बात यह है कि उठ नहीं पाते, तेज दर्द होता है कूल्हे में, टांग छोटी हो जाती है, बाहर की तरफ लटक जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे किसी का फोन आए कि पिताजी गिर गए, माताजी गिर गए और उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर सबसे पहले यही सस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आपका कूल्हा टूट गया तो आप वजन तो लेगा नहीं और आप नीचे से उठ भी नहीं पाते हैं। तो कई बार हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई माता पिता घर पे थे, अकेले थे कोई उनमें से, और गिर गए और कहीं 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो जमीन पे ही पड़े रहे क्योंकि कोई था नहीं जो उनको उठा पाए। तो इस हिसाब से हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमने एक्चुअली IIT के कुछ साइंटिस्ट के साथ में कुछ हिप प्रोटेक्टर भी बनाए हैं, और आजकल ये चीज़ कई फ़ोन में ऐप भी आ गए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी है। तो हम लोग वृद्धों को समझाते हैं कि अगर आप गिर जाएं और घर पे अकेले हो तो उसी टाइम इमरजेंसी हेल्प के लिए या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे तुरंत बटन दबाएं, क्योंकि अपने आप से उनके लिए उठना भी संभव नहीं होता और तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराना पड़ता है।
1: जी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि इसको इग्नोर ना किया जाए। अगर कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग स्लिप कर गया है तो इमीडिएट उसका इलाज कराया जाए। अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है ज्योति जी का, इन्होंने कहां से भेजा है ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 40 साल की है और आगे लिखते हैं कि 2 साल से अर्थराइटिस है इनको और नी में इनकी इंजरी भी है और 2 साल

0: से दवाई ले रही हैं ये, और इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये फिजियोथेरेपी भी करवा रही हैं, तो किस तरह से इनको आराम मिली ये जानना चाहती हैं। क्या ये असर करेगा फिजियोथेरेपी कराना?
1: जी, फिजियोथेरेपी तो बड़ा फाउंडेशन है किसी भी ऑर्थोपेडिक इंजरी का, लेकिन आपको चोट लगी उसके बाद में कैसा रहा, आपका एग्जामिनेशन करना, आपके एमआरआई की फिल्म देखना, आपके एक्सरे देखना, सब कुछ ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आपको ठीक से इसके बारे में सलाह दी जा सकती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और अगर आप कहीं, एक रूल है, हम लोग कई बार पेशेंट को खुद ही एनकरेज करते हैं कि अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अगर आपको पूरा रिलीफ नहीं आ रहा है या आप वो चाहते हैं, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सेकेंड ओपिनियन वैसी होगी जैसी आपके पहले डॉक्टर ने कहा, तो आप उसको फॉलो करने में आपको फिर कोई संकोच नहीं होगा। तो अगर ऐसी परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाएं, और अगर दिखा रहे हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो एक सेकेंड ओपिनियन लें।
0: जी, ये जानना चाहती कि 100% क्या असर करता है फिजियोथेरेपी?
1: फिजियोथेरेपी 100% अपने आप में नहीं करता है। कुछ बीमारियों में 100% ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होता है, कुछ में परसेंटेज होता है। अगर जैसे कि आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ऑपरेशन चाहिए, तो फिजियोथेरेपी से ऑपरेशन का काम नहीं हो सकता, लेकिन ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में भी फिजियोथेरेपी का रोल है। तो फिजियोथेरेपी का रोल हमेशा है, लेकिन फिजियोथेरेपी अपने आप में पूर्ण उपचार बहुत ही रेयर केसेस में होता है।
0: जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी, अपना शुभ नाम बताएं।
2: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं गौतम जी, क्या सवाल है?
2: बढ़ती उम्र में रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के क्या कारण है, और 3-4 ऐसे उपाय बताएं जो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए।
0: जी
2: धन्यवाद।
3: सो जैसे कि गौतम जी हम लोग चर्चा कर ही रहे कि उम्र के साथ साथ हड्डी का वीक होना, उसमें हार्मोनल से लेके मोबिलिटी, आप कितना चलते हो, आपका पोस्चर क्या है, आपका खान पान क्या है, आपके आपने पहले आपका और कोई कौन कौन बीमारी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को एक एंडोक्रीन ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर में माना जाता है, तो जिनको डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, इन लोगों को भी इनसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो एक तो प्लस हमने जैसे कहा कि पेन का हर टाइम कारण हड्डी नहीं होता है, उसके साथ साथ जो मसल है उसका भी कभी कभी कारण हो सकता है, जिसके साथ आपका पोस्चर का काफी हद तक रिलेशन है। तो रोकने का तरीका यही है, आप खान पान सही करिए। जैसे कि हम अभी रेकमेंड करते हैं कि एज पर योर वेट, अगर आपका उम्र वेट अगर 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। मसल का खाना है प्रोटीन, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आइडियली दैट शुड बी नेचुरल प्रोटीन, अलग से प्रोटीन पाउडर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा खान पान में हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हर मसल को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जितना आपका बॉडी परमिट करे। शुरू में अगर आपको एक्यूट पेन है तो उस टाइम में आप खुद से एक्सरसाइज ना करके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे नियरेस्ट डॉक्टर, उसके बाद आप करिए। तीसरा चीज है, हमारा पोस्चर को काफी ठीक रखना जरूरत है। आज के जमाने में 40-50 साल से ही हम लोग भी मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो हमारा जो बैक का मसल है वो कोई ना कोई अलग ऐसे ऐसे पोस्चर में रहते हैं जिसमें हमारा पेन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। सो इवन जो जो बीमारी पहले 60 साल में होता है, मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हड्डी घिस जाना जिसको कहते हैं, चाहे वो घुटनों में हो, चाहे वो स्पाइन में हो, हाथ में हो, वो आजकल काफी अर्ली एज में हो रही है। प्राइमरली दिस इज ड्यू टू पोस्चर एंड एक्सरसाइज कम करना। तो एक्सरसाइज करिए, खान पान सही रखिए, पोस्चर को मेंटेन करिए, दिस थ्री विल बी माय एडवाइस।
0: राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम घर में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों या गाड़ी चला रहे हों, हमारी आदत हो जाती है कि हम जो अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं, तो उसको हैबिट में लाना एक बहुत बड़ा जो आपने समाधान बता दिया है वो है। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखें तो बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी। डॉक्टर साहब, अगर फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर होता है, तो किस तरीके का प्राथमिक उपचार लेना जरूरी है?
3: उपचार तो जैसे सर ने कहा कि अगर हिप फ्रैक्चर हुआ है आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में, क्योंकि एविडेंस दुनिया भर में एविडेंस कहते हैं कि अर्लीएस्ट यू डू सर्जरी, जितना जल्दी आप सर्जरी करेंगे उतना उनका रिकवरी होने का चांस रहेगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, लेट्स से 90+ केसेस विद फ्रेलिटी, जो कि अगेन नीड्स असेसमेंट बाय द डॉक्टर, बट आप उनको घर में ऐसे तो रख नहीं सकते हो लंबा समय तक। जो बात सर भी कह रहे थे कि एक सपोज किसी ने बाथरूम में गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, जो उठ नहीं पा रहा है, उनका बाकी कॉम्प्लिकेशन भी फटाफट होता है, जैसे कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि यू नो सलाइवा अंदर एस्पिरेट कर जाती है, उनका

0: उनका वो बेहोश हो सकता है, फ्रैक्चर होने के बाद अगर हेड इंजरी हल्का भी हुआ है उससे उनको ब्रेन स्ट्रोक का होने का भी चांस रहता है। फिर शुगर का भी जो जो पेशेंट है उनका सडनली शुगर घट जाने से वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे कार्डियक इवेंट भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर को आपको मतलब सोचना है। तो गिरने के बाद आदमी को घर में रखना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एंड देन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विल डिसाइड कि क्यों गिरे थे और इमिडिएट उपचार क्या है।
1: और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है या किस तरह के टेस्ट होते हैं उसके लिए कुछ बताएं सर।
2: जी, तो सबसे पहले जब ऐसा पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर प्रसून ने कहा कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि चोट लगने के 48 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन करके उनको खड़ा करके चला दिया जाए तो उनकी जान बचाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। जितना ऑपरेशन में डिले होता है, विलंब होता है, उतना कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। बेड सोर हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, टांग में क्लॉट बन सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है जिसके लिए हमें डॉक्टर प्रसून को पकड़ना पड़ता है कि वो पेशेंट को ऑपरेशन की कंडीशन में जल्दी से जल्दी लाया जाए। शुगर हाई है तो शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। जो चीज़ क्रॉनिक है कि किडनी खराब है, लंग्स खराब है, अब वो है तो है लेकिन इस समय तो ये जान बचाने का ऑपरेशन हो जाता है। तो
1: जी
2: इसमें कई बार थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन का उद्देश्य ये होता है कि बेड पे पड़े रहने से होने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है, उनको उनसे बचा जा सके और जल्दी से जल्दी पेशेंट को खड़े करके चलाया जाए। और इसके लिए ही ऑपरेशन होता है और इसी के लिए फिटनेस देखी जाती है। पर ये आसान निर्णय नहीं होता है क्योंकि ये सब हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। तो हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कई बार उनको ये पता ही नहीं होता कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। उन्हें लगा कि थोड़ा सा हल्का सा गिर गए थे, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता कि अच्छा से अच्छा इलाज होने के बाद भी 1 साल तक उनकी मृत्यु होने के चांसेस, रिस्क बहुत हाई है। सब कुछ ठीक हो गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन कम से कम 40% पेशेंट ही ऐसे 40% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो उतना अच्छे से चल पाते हैं जितना कि ऑपरेशन, जितना चोट से पहले चलते थे। 60% जो है वो स्टिक या वॉकर पे आ जाते हैं। 40% पेशेंट से ज्यादा अपने काम पे दोबारा नहीं जा पाते हैं। तो एक तरह से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बदल जाता है इस एक फ्रैक्चर से।
1: जी, तो मतलब ये साधारण सी बात ना समझी जाए, जो कि हम समझ लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। किस तरह से आगे की सावधानियां हो बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका
3: Hello.
1: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो
1: जी सर, अपना नाम बताए मैम।
3: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला से।
1: जी मैम बताए, क्या सवाल है आपका?
3: हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, सबको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, नमस्कार।
3: हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं सन 76 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ
1: जी,
3: और मेरा नवंबर 24 में, मैं योगा की टीचर हूँ
1: जी, जी।
3: तो मैं गई क्लास लेने तो वहाँ स्लिप करके दीवार के साथ लगी तो मेरा फेमर का वो जो नेक बॉल होता है वो टूट गया।
1: ओ।
2: उसी प्रोग्राम, उसी फ्रैक्चर की आज बात कर रहे हैं हम।
3: हाँ जी वही बता रही हूँ मैं, थोड़ा मेरा केस डिफरेंट इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिविटी ने मुझे जिंदा रखा है।
1: जी,
3: एक तो मैं योग में हूँ, 27 ईयर्स हो चले
1: जी।
3: दूसरा, मेरा नेक्स्ट डे सर्जरी हो गई। मैं 91 से डायबिटिक भी हूँ, बीपी मेरा ठीक ही रहता है, 60 रहता है ऑलमोस्ट
1: जी।
3: तो मैं ये मैसेज सा देना चाहती हूँ आपके थ्रू कि मेरी सर्जरी हुई तो मेरे डॉक्टर इस बात से खुश थे कि मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग थी। सारा दिन मुझे विजिटर्स आने मिलने जुलने, तो वो कहते आप ठीक ही इसलिए हुए हो, चाहे डायबिटिक हो, आपके स्टिचेस इतने अच्छे कट गए हैं
1: जी।
3: तो
1: जी,
3: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर चोट लगती है तो ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई।
1: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने।
2: और एक और बहुत जरूरी बात है, जैसे मिसेस बेदी ने कहा कि इनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं दिखलाता, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिससे कि ये फ्रैक्चर हुआ, मुझे लगता है जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर वो फ्रैक्चर का इलाज करता है और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज नहीं करता है, उसने अपना काम अधूरा किया है। क्योंकि एक हिप टूटा है तो दूसरा हिप बचाना जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में

0: फ्रैक्चर होने से जो आगे झुक जाती है, वो जो पीछे डिफॉर्मिटी हो जाती है, कुबड़ निकल आता है, वो सब ऑस्टियोपोरोसिस से है। और अगर हमें एक बार झटका लगा और उससे डॉक्टर और मरीज दोनों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ऐसी चीज दोबारा हो सकती है और उसको बचाना बहुत जरूरी है, तब तक इलाज प्रॉपर नहीं हुआ। और पेशेंट का भी ये कर्तव्य है कि जो ट्रीटमेंट को फॉलो करें कि हड्डी टूट गई, जुड़ गई, तो इलाज खत्म नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के एंड पे वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, और करते हैं तो पेशेंट ठीक होने के बाद वो दवाइयां लेते नहीं हैं जो उनको और फ्रैक्चर से बचा सकती हैं। तो कुल मिला के इसके लिए हम सभी जिम्मेवार बन जाते हैं। फिर
1: मैं मिसेस बेदी मैडम के बारे में और एक चीज बताऊंगा। एक और एक इम्पोर्टेंट मतलब आपका प्रेडिक्टिंग फैक्टर है, प्रोबेबली सी वाज वेरी मोबाइल। फ्रैक्चर से पहले जो लोग ज्यादा मोबाइल होते हैं, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ भी एक फैक्टर है, मे बी सी हैज ए पर्पस, यू कैन से दैट, सो हैप्पीनेस, पर्पस, ये सब कुछ मैटर करता है। जैसे कि सर ने कहा ट्रीटमेंट तो करना है, सो जो भी मोबिलिटी सीनियर सिटीजन में काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा मोबाइल रहोगे फ्रैक्चर के बाद आपका रिकवरी का चांस ज्यादा है। जितना ज्यादा मोबाइल रहोगे, इवन स्ट्रोक के बाद भी इंप्रूवमेंट उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है जो पहले काफी मोबाइल रह चुके। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर हर ऑल्सो कि सी रिकवर्ड वेल।
2: जी, तो यहाँ पर ये संदेश आपने दे दिया है डॉक्टर प्रसून सर कि अपनी जो दिनचर्या है उसको ऐसा रखें कि लगातार आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें, चाहे आप पार्क घूमने जाएं, आप घर में ही थोड़ा चल फिर लें, जो भी पॉसिबल हो वो करें। आपसे बहुत सारे भी सवाल करने हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

अनुराधा जी, बहुत ही बेहतरीन गाना डॉक्टर प्रसून ने चलवाया, और मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो आपका परिवार, आपके मित्र और आपके डॉक्टर आपके लिए हमेशा साथ है। और अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको ये बताए कि मुश्किल से बचाए।

0: कैसे जाए और इसीलिए शायद अनुराधा जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है।
1: रेडियो डॉक्टर लगातार आपके साथ है हर मुश्किल में कि आप स्वस्थ रहें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका निदान कैसे हो। और स्वस्थ रहने का एक विकल्प और है कि अच्छा संगीत सुना जाए, थोड़ा बहुत गाया गुनगुनाया भी जाए। और आपको श्रोताओं बता दूं कि हमारे आज के जो दोनों विशेषज्ञ हैं गाने भी महारत उनको हासिल है, तो एक एक लाइन हमारे श्रोताओं के लिए सर हो जाए।
2: ने अभी जो गाना हमने गाया ये बहुत फेवरेट सुने हमने, ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा। तो जब कोई बात बिगड़ जाए

0: क्या बात है जी सर।
1: अनुराधा जी, मुझे लगता है भगवान का साक्षात रूप माँ है, तो गाने तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक लाइन में गाना चाहूंगा। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
0: बहुत सुंदर। और श्रोताओं, माँ का आशीर्वाद हो और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका साथ हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, और दोनों आशीर्वाद आज आपके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर गीत आपको सुनाया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉलर फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी,
2: मैं ब्रह्मदत्त मंगोलपुरी दिल्ली ट्रांसफर से कॉल कर रहा हूँ। पहला तो आई एम सब के जावा योर मेलोडी सॉन्ग दे उत्ते जेडे तुसी गाए ने हुणे। ब्रोसरा साहब, मेरी चाची जी ने 80 ईयर ओल्ड।
1: अच्छा जी।
2: ओ टैप ए सी थल्ले प्रेशर हो गया सीगा, लै ते हुण वाकर नाल तुरदे ने, ते मैं जानना चाहंदा सीगा वाकर किस तरह उहनां दी छुटेगी।
1: इतना कर दी कहानी है, इसीलिए हमने ये टॉपिक इस बार चुना है, क्योंकि हर घर में, हर पड़ोस में, रिश्तेदारी में, देखिए ऐसा है कि हम सबकी उम्र बढ़ रही है, और पहले तो लोग चेचक मलेरिया से ही चले जाते थे, अब हम जीते हैं देर तक तो कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारियां बढ़ गई हैं। तो इस टाइम पे ना, देखो मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो वॉकर छुड़वाने से ज़्यादा उनको गिरना नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर प्रसून ने भी कहा कि उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारा मसल मास खत्म हो जाता है, मांसपेशियां खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। और फिर एक ये भी बात हुई कि बड़ी सारी दवाइयां, ये भी हम जानते हैं कि जो पेशेंट 5 से ज्यादा दवाइयां एक दिन में खाते हैं, और जिनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है किसी तरह का भी है, और जो गिर चुके हैं, इन सबको गिरने का खतरा बहुत होता है। तो पहली बात तो ये है कि इनको गिरने से बचाना है, इनके दिमाग से गिरने का खतरा हटाना है। दूसरे, इनकी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना है, इनकी मांसपेशियों को मजबूत करना है। वॉकर एकदम नहीं छूटेगा, हम कोशिश करें कि वॉकर से स्टिक पे आएं, और इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिनका मतलब है कि आपका बैलेंस कैसे अच्छा किया जाए और कैसे आपको गिरने से बचाया जाए, तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो और जितना ज़्यादा, जैसे कहा कि फिजिकली फिट रहेंगे और उतना ही ज़्यादा उनको गिरने का खतरा कम रहेगा। तो एक इनको अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सरसाइजेस करवा के सुपरविजन में इनको वॉकर से पहले स्टिक पे लाया जाए, और स्टिक छोड़ने की मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रिस्क मैं नहीं लेना चाहूँगा कि वो बिना स्टिक के चले और गिर जाए, पर कम से कम वॉकर से उनको स्टिक पे जरूर शिफ्ट किया जा सकता है
0: जी।
3: और वेट अगर ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रयास करें, क्योंकि काफी टाइम
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, बड़ी नियमित हमारी श्रोता हैं और मैसेजेस आते हैं हर बार इनके। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर हैज मेडिकल साइंस डेवलप्ड एनी इंस्ट्रूमेंट विच कुड गेट अटेस्ट टू देयर यूरिनरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर ओल्ड मैन एंड वुमेन, सो दे कुड पी वेल दे आर ऑन देयर बेड्स एंड डोंट हैव टू गेट अप।

0: their fall could completely be stopped in this way?
1: Joya ji, question bada interesting hai, but I think वो पेशेंट स्पेसिफिकली कैसा है ये जानना चाहूँगा मैं, बट अगर वो उठ के बाथरूम तक जा सकते हैं तो ये तरीका तो एकदम ही सही नहीं है। कोई भी हम फॉरेन बॉडी हमारे यूरिनरी ट्रैक में डाले तो वो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाती है। तो इवन हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितना कम से कम लोगों को कैथेटर में रखा जाए या डायपर पहनाया जाए। तो बाकी चीज़ में ध्यान दीजिए, अगर आप स्लीप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, अगर ये कोई मेल सीनियर सिटीजन है जिनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, उनको रात को बार बार बाथरूम जाने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उनको कोई प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जिसके कारण उनको बाथरूम हो रहा है, तो ये सब हमें दवाई पे देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लीपिंग पिल इज वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। अगर कोई स्लीपिंग पिल पे है, कफ सिरप पे है, रात को उठते हैं, उनको गिरने का संभावना ज्यादा होते हैं। सो बाथरूम जाना हमें बंद करना इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल एट दिस एज, लेकिन हमें साथ में ये भी जानना है कि रात को हमें बाथरूम आना ज्यादा होती है उम्र के साथ साथ ड्यू टू सर्कैडियन रिदम चेंजेस। तो इसलिए मैं मेरे पेशेंट को ये प्रमोट करता हूं कि आप अगर घर में हो 6 बजे तक अपना आखिरी डिनर कर लो, विच इज वेरी साइंटिफिक। 6 बजे तक हम अपना खाना खत्म करते हैं और 7 बजे तक पानी पी लेते हैं, तो और सपोज हम 10 बजे 11 बजे सोने जाते हैं, तो इवन इफ यू हैव प्रोस्टेट प्रॉब्लम 3-4 बार आप बाथरूम चले जाते हो तो रात को उठने का चांस कम हो जाती है। एट ए स्टेज 3 से 4 घंटे हमें सोना हो जाए, देन वी गो टू बाथरूम, चांसेस ऑफ फॉल विल ऑल्सो बी लेस, क्योंकि वी कंप्लीट अ पूरा स्लीप साइकिल।
2: और जैसा कि डॉक्टर प्रसून ने कहा, देखिए कोई कैथेटर डालना, कोई डायपर, ये सब इन्फेक्शन को दावत देते हैं। इनके बारे में छोड़े, इसके उससे ज्यादा अच्छा ये है कि गिरने का खतरा कम किया जाए। वृद्ध व्यक्तियों के पास में एक बेड स्विच रखते हैं जिससे वो पहले लाइट जला पाएं, बाथरूम कमरे के अंदर अटैच्ड हो, वहां आराम से जा पाएं तो अच्छा है। अगर उनको चलने में मुश्किल है तो स्टिक या वॉकर पास में रखें, और अगर इससे भी मुश्किल लगती है तो एक बेड साइड कमोड चेयर रख लें, उसमें से खड़े हो, चेयर में बैठे पास कर लें, उसको ढक दें, लेकिन पूरी तरह से आश्रित हो जाना डायपर पे या कैथेटर पे और आगे जाके इन्फेक्शन और किडनी फेलियर को दावत देता है।
1: और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जिनको फॉल रिस्क ज्यादा है, जो कि हम लोग एसेस करते हैं, सो आजकल काफी सारे डिवाइस भी आ गए, जैसे अभी जैसे सर ने भी कह रहे थे एम्स के साथ मिलके ग्रुप में बनाया है, तो आप एक बेल्ट जैसे पहनोगे, जब आप लेटे हो तो वो डिफ्लेटेड है, जब भी आप उठते हो इन्फ्लेट हो जाए। सो इसका प्लस माइनस सब कुछ है, बट स्टिल यू कैन प्रोटेक्ट लिटिल बिट ऑफ योर हिप, सो हिप प्रोटेक्टर के दौर पे ही आते हैं। सो आपको प्रिवेंट करना है फ्रैक्चर, ना कि बाथरूम जाना आप प्रिवेंट कर दोगे पूरा पूरा। ऑफ कोर्स द पेशेंट इज टोटली बेड बाउंड तो स्टोरी अलग होती है, तब तो डॉक्टर खुद ही डिसाइड करेंगे क्या करना।
0: आगे का क्या, जब होता है ऑपरेशन सर्जरी होती है तो क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास सतीश कुमार जी का रोहिणी दिल्ली से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 65 साल की है और वेट इनका 90 kg है। इन्होंने लिखा है कि इनकी कमर में दर्द रहता है और जब ये उठते बैठते हैं तो ज्यादातर दर्द होता है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि 500 meters चलता हूं लेकिन इनको फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
1: सो पहली तो बात मैं बोलूंगा आपको वेट घटाना होगा।
0: जी बिल्कुल, अभी आपने
1: कहा उम्र में जाके वेट घटाना काफी कठिन होता है, क्योंकि आप उतना फ्लेक्सिबल उतना एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते हो। बट डाइट के ऊपर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, डाइट को हम पहले ऑल्टर करें, सही टाइम पे खाना खाए। हमारा इंडियन डाइट में ओबेसिटी का चांस ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके ऊपर भी काफी स्टडी हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खान पान पे फोकस्ड है, रोटी चावल सब्जी सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो आप ओवरऑल खान पान में कैलोरी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, हर खान पान में 30% प्रोटीन को डालने की प्रयास करिए। 2 बार से तो 3 बार से ज्यादा हमारा खाने की जरूरत नहीं है, एक ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट, हल्का सा लंच एंड देन डिनर अराउंड 6 PM, ये हम करें। और फ्लेक्सिबिलिटी जितना हमारा मोबिलिटी बनते रहे उसको करें, पोस्चर को ठीक रखें। इसके बावजूद भी आपको पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, बट वेट इज अ मेजर फैक्टर फॉर हिम,
0: उसको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि सर्जरी जिसकी हुई है तो किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है पेशेंट को।
2: जी, तो पेशेंट को हॉस्पिटल ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट का ऑपरेशन जो ही हो जाता है, मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होते ही हम उनका खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं और उनको बाथरूम भेजते हैं, एक दो सीढ़ी भी उनको चढ़ने की

0: प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जब ऐसा रहे कि वो घर में कंफर्टेबल रहेंगे, जरूरत पड़ने पे कुछ सीढ़ियां चढ़ लेंगे, चल फिर लेंगे, बाथरूम चले जाएंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएंगे, फैमिली के साथ कहीं गाड़ी में बैठ के खाना वाना खाने चले जाएंगे, तो हम भेज देते हैं, उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। 48 घंटे में अक्सर ऐसा हो जाता है, जब तक कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो जिसकी वजह से उनको रखना पड़े शुगर कंट्रोल या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज उनको चला के हम ये चाहते हैं कि उनको कम से कम देर बेड पे रहना पड़े, तो चोट लगते ही ऑपरेशन करते ही खड़े करना, चलाना और नॉर्मल होने की कोशिश करना, कुछ दिन तो ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। पर इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई शुरू करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस शुरू करना ताकि गिरे नहीं, और एक बार अपनी डाइट पे प्रोटीन इंक्लूड करना, मसल स्ट्रेंथनिंग इंक्लूड करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: जी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 साल की है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके लिए मैं फ्लोरिश गोली महीने में एक बार लेती हूं, इसे मैं कितने दिन ले सकती हूं?
0: इसको 3 से 5 साल ले सकते हैं, लेकिन ये जो महीने में एक बार लेने वाली गोली होती है ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, बड़ा वीक एजेंट है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ही हल्का सा ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने दिया, हल्के से मतलब है कि बहुत ऑस्टियोपोरोसिस के बजाय ऑस्टियोपीनिया ज़्यादा कहना चाहूँगा, और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आपकी 75 साल की उम्र है तो आपको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा स्ट्रांग दवाई लेनी चाहिए जो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको स्टार्ट करनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो बस अपने श्रोताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमने आज चर्चा की जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर के बारे में, और हमारे आज के दो विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, फॉर्मर चीफ जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली, साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: और अब श्रोताओं, अनुराधा को दीजिए रेडियो डॉक्टर से इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। जम्मू कश्मीर

सरकार ने लैंड पूलिंग नीति 2026 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य भू स्वामियों और विकास एजेंसियों की स्वैच्छिक भागीदारी से भूमि को एकत्र कर सुनियोजित शहरी विकास के लिए ढांचा तैयार करना है। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
4: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष।

0: जी हाँ, वजह कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसकी वजह से आज के युवाओं में गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवा छोटी छोटी बातों पर झुंझला भी रहा है। जी हाँ, बेचैन युवा क्यों अपने गुस्से की आग में स्वयं को भस्म कर रहा है, आइए जानते हैं कुछ युवाओं से।
1: हाय, मेरा नाम है राधिका, मैं लखनऊ से हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि गुस्सा आने की सबसे बड़ी वजह है प्रेशर। चाहे पढ़ाई का प्रेशर हो, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, करियर को लेकर टेंशन, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने का प्रेशर। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। उस समय लगता है कि सामने वाला परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचती हूँ तो लगता है कि असली वजह वो छोटी सी बात थी ही नहीं। शायद पहले से ही पढ़ाई या किसी और चीज़ को लेकर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरे साथ भी कई ऐसी बातें हुई, उनमें से मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्टडी टारगेट कंप्लीट करने के लिए बैठी, लेकिन वो बार बार किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मुझे हर छोटी चीज़ इरिटेटिंग लगने लगी। बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे लगा कि मुझे उस इंसान या उस सिचुएशन से इतना गुस्सा नहीं था जितना खुद पर था कि मेरा काम समय पर पूरा क्यों नहीं हो रहा। और शायद यही बहुत से युवाओं के साथ होता है, हम अपनी परेशानियां हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते। इसीलिए जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी समय जवाब देने के बजाय थोड़ी देर शांत हो जाऊँ, क्योंकि कई बार हमें सिचुएशन बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस उस सिचुएशन को देखने के लिए अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। और शायद यूथ का यही सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास इमोशंस बहुत हैं लेकिन उन्हें हैंडल करने का पेशेंस थोड़ा कम है।
2: मैं बीड़ा उन्नाव से हूँ। मेरा ये कहना है कि युवाओं को गुस्सा होने का कोई एक कारण नहीं, बल्कि बहुत से कारण हैं। जैसे फिर चाहे वो करियर को लेकर हो, अपने सपनों को पूरा करना हो, समय से पहले यह समय पर सब कुछ पा लेना, वहीं कुछ और भी कारण हैं, सब कुछ करने की आजादी होना।
0: दोस्तों, अभी आपने सुनी कानपुर की राधिका और लखनऊ की वीणा की बातें, और इनकी बातों को सुनकर इस बात का एहसास तो जरूर हो जाता है कि आज का युवा इस बात को बखूबी जानता है कि उनके अंदर गुस्सा जो भर रहा है उसका कारण क्या है। दोस्तों, आज के युवाओं को बस जरूरत है सही दिशा के मार्गदर्शन की। इसीलिए कैसे युवाओं के गुस्से को कंट्रोल करके उनको सही दिशा दिखाई जा सकती है, आज हम जानेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

0: जी हाँ, रंग बदलती दुनिया में प्यार से न सिर्फ युवाओं की सोच बदली जा सकती है, बल्कि उनकी जिंदगियों को एक नई दिशा देकर उनके लिए एक नई इबादत भी लिखी जा सकती है। कैसे, आइए बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: अच्छा विनीता जी, आज के युवाओं के अंदर जब आप गुस्से को भरा हुआ देखती हैं, तो आपका दिल आपसे क्या कहता है?
1: सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी के साथ अपनी सहानुभूति बांटना चाहती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि एक माँ होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी किस दुख की घड़ी से गुजर रही है। बहुत तकलीफ है और मुझे भी बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। हर पीढ़ी में, युवा पीढ़ी के जब सपने चकनाचूर होते हैं, उनका दिल टूटता है, तो वो क्रोधित होते हैं, आक्रोश से भरते हैं। लेकिन आत्महत्या करना, नशे का या हिंसा का सहारा लेना, ये सही नहीं है
0: जी।
1: ये समाधान नहीं है। हमारे समय में भी बहुत सारी युवा पीढ़ी से संबंधित परेशानियां आई और बहुत लोगों ने अपने आप को खत्म कर दिया। खत्म करना या अपने आप को गुस्से से राख कर लेना, ये समाधान ना था, ना है, ना हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। गुस्से में अपने आप को या अपने जीवन को मुश्किल में डालना, ये ना तो समाधान है और ना ही समझदारी।
1: संतोष, हम गुस्से में जब होते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्सा करना वाजिब है
0: जी।
1: गुस्सा होने के तमाम कारण हैं आज की युवा पीढ़ी के पास, जिसके साथ मैं भी बहुत दुखी और गुस्से में हूँ। लेकिन इस गुस्से को हम कैसे माध्यम बना सकते हैं एक बदलाव लाने के लिए, वो सोच विचार करना, बातचीत करना बहुत आवश्यक होता है
0: जी।
1: कई बार जवान लोग इतना गुस्से में भर जाते हैं कि वो ठीक से सोच समझ नहीं पाते, उनकी सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो स्वयं को और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: तो विनीता जी, युवाओं को क्या करना चाहिए?
1: शांति रखना, हिंसा से स्वयं को दूर रखना, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर में आशा रखना।
0: जी हाँ, जब हम ईश्वर पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारे बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं और हमारी मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है।

दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई युवा है और आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप 7678438471 पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7678438471। और याद रखिए, युवाओं पर क्रोध करने से बेहतर है कि हम उनकी काउंसलिंग करें और उनको दिखाएं सही दिशा।

अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फाजन। अल्फाजन बुधवार का बहुत ही खास एडिशन होता है और अल्फाजन का ये जो बुधवार का एडिशन होता है इसे हम कहते हैं कैंपस कॉलिंग। इस बहुत ही स्पेशल एडिशन में हर हफ्ते हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम आपको वहां के स्टूडेंट से मिलवाते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करवाते हैं, अलग अलग बातें जो है ना वो हम आप तक पहुंचाते हैं। वहां के फेस्टिवल्स हों चाहे वहां के क्लासरूम्स हों, वहां की जो भी वाइब है वो अगर आप तक पहुंचती है तो हमारे इसी कार्यक्रम के जरिए पहुंचती है जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे जी। और आज मेरी सहयोगी माला नेगी जो है वो पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है जब रेगुलर कॉलेज से ना ओपन लर्निंग की कंपैरिजन होती है तो मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी एक डिग्री जो है वो रेगुलर कॉलेज से की है और 2 डिग्रीज जो है मैंने अपनी डिस्टेंस लर्निंग से की है और मुझे दोनों के बीच में हमेशा ही डिस्टेंस लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेबल लगा है। हालांकि अब उसकी बहुत सारी वजह जो है और भी ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं, एडवांटेजेस ऐड हो चुकी हैं, बहुत सारी वजह जो है वो चेंज हो चुकी हैं, जमाना

0: है ना वो काफी ज्यादा बदल चुका है. अब मेरे टाइम जब मैंने ये सारी डिग्रीज की थी और अब जो हमारी जेन जी है वो ये सब पढ़ना चाह रही है, तो क्या कुछ है उनके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए. अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो. और आइए चलते हैं हमारी सहयोगी माला नेकी के साथ डायरेक्टली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग.
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आप जान चुके हैं कि उन्हें एडमिशन फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में मिलने भी वाला है या नहीं मिलेगा. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उनका मिथ यहां पर तोड़ना बहुत जरूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपके लिए बाहें खोले इंतजार कर रहा है. और यहां से भी आपको जो डिग्री मिलेगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी. और अभी मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में यहाँ की डायरेक्टर के साथ, जो कि आज बहुत सारे हमारे ऐसे सवालों के जवाब देना चाहेंगी और हम भी उनसे जवाब लेना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है. तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: थैंक यू.
1: हमारे साथ हैं प्रोफेसर पायल मागो मैम, डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, अब हमारे लिए सारे द्वार बंद है, तो आप इस बारे में क्या कहना है?
2: बिल्कुल सोच ये सही नहीं है. और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिला तो आपके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, जिसका नाम अभी अभी बदला है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. तो आपके रास्ते तो हमेशा से खुले हैं. इसमें पीजी प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, और अभी जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स ने अपना कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, वन ईयर का जो पीजी प्रोग्राम है वो भी काफी सारे पीजी प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में हैं. और बात केवल यहीं पे नहीं खत्म होती है, हम केवल उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं, और उनको एसएल में एडमिशन मिल सकता है, ये ट्रू है. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटेंशनली अपनी चॉइस से रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेते और वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है. अगर हम अपने मार्क्स की रेंज देखें तो हमारे मार्क्स की रेंज 95-97% से लेके 33% वाला स्टूडेंट भी हमारा स्टूडेंट है.
1: ओके.
2: तो जो पूरी रेंज है मार्क्स की वो हमारे पास है. और इसकी एक ही वजह है कि कुछ लोग जिनको एडमिशन नहीं मिलता वो हमारे पास आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनको रेगुलर में एडमिशन ना लेके ओपन में एडमिशन लेके अपना बाकी सारा समय कहीं और बिताना है, किसी और यूजफुल काम में करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, कोई और चीज सीखनी है, उसके लिए वो स्टूडेंट्स वहां पर रहते हैं.
1: जी.
2: कुछ क्लासेस उनको ऑनलाइन मिल जाती हैं, कुछ क्लासेस ऑफलाइन मिलती हैं, जिसमें उनको केवल एक या दो दिन हफ्ते में जाना पड़ता है, और लेकिन डिग्री तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है. जो आप करिकुलम पढ़ रहे हैं, जिस चीज में आप ट्रेन हो रहे हैं, वो वही करिकुलम है जो रेगुलर में करिकुलम होता है. जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम क्वेश्चन पेपर आता है जो रेगुलर में आता है. सेम डे पे आपका पेपर होता है. जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ आपका भी पेपर होता है.
1: अच्छा.
2: और जो इवैल्यूएशन है वो भी रेगुलर के टीचर्स ही करते हैं. तो आपकी डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इसलिए जब आपको डिग्री मिलती है तो रेगुलर की डिग्री और आपकी डिग्री, एसएल के स्टूडेंट की डिग्री एक ही होती है, उनकी मेरिट भी एक होती है. और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले कई वर्षों से जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं वो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं. बिल्कुल पिछले ही साल करीब 5 टॉपर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं. एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस में तो कई वर्षों से जो टॉपर है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ही है. इस बार एमकॉम का टॉपर भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का रहा, एमबीए का टॉपर रहा, और लाइब्रेरी साइंस के जो BLISC और MLISC दोनों कोर्सेज हैं वो भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर बने.
1: वेरी सरप्राइजिंग टू नो मैम. और इससे ये पता चलता है कि अगर मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है तो समाज में किस तरह के मिथ्स हैं अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन न लेकर SOL में लिया है तो.

0: ये तो मैम आपने बताया कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें, कहते हैं बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनको आगे करियर में बहुत मिलने वाली है, SOL से क्या मिलेगा?
1: SOL के साथ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर व्यक्ति स्किल्ड हो, NEP का भी जो विजन है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो भी हर व्यक्ति स्किल्ड हो। तो SOL में हमने एक स्किल सेंटर बनाया जिसके अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स, और वो स्किल्स आपकी फॉरेन लैंग्वेज की स्किल्स हैं या फिर आपकी हैंड्स ऑन की स्किल्स हैं, उसमें बेकरी, कन्फेक्शनरी, इंग्लिश कन्वर्सेशन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा साइंसेस की जो स्किल्स हैं, लाइब्रेरी साइंसेस की स्किल्स हैं, इस तरह के स्किल कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज वहाँ पर हैं। और जो ये अपना समय आपको मिलता है कि आप दो दिन अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की क्लासेस अटेंड करते हैं, तीन दिन अटेंड करते हैं, उसके बाद में जो समय मिलता है आप ये इस तरह के हैंड्स ऑन स्किल कर सकते हैं। जब भी आप हैंड्स ऑन स्किल करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपको आगे आने वाला समय है उसमें आपकी जो जॉब मार्केट है वो आपके लिए खुली हुई होगी। वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन है, स्टेनोग्राफी का कोर्स है, तो जितनी भी स्किल्स आप सोच सकते हैं कि मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए वो भी यहाँ पर है।
0: मैम आकाशवाणी का FM रेनबो की जो रीच है वो पूरे विश्व में है, SOL की रीच कितनी है, और अगर कोई SOL के जरिए कोर्स करना चाहता है तो क्या सिर्फ वो इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है या विदेशों में भी लोग SOL के थ्रू कोर्सेज कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अभी जो SOL प्रेजेंट में था तो वो केवल दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर केवल दिल्ली में होता था, तो ज़्यादातर दिल्ली और NCR के बच्चे और कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पर पेपर देते थे। लेकिन अभी इसी साल से हमने कुछ लैंग्वेज कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं। ये लैंग्वेज कोर्सेज में फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, अरबिक, पर्शियन भी है, और साथ में हिंदी और संस्कृत भी है। तो जो लोग बाहर बैठे हैं, जो हिंदी और संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे जापानीज हिंदी संस्कृत सीखते हैं, जर्मन हिंदी संस्कृत सीखते हैं, और भी कंट्रीज हैं जहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो ये सीखते हैं, तो वो एडमिशन इसमें ले सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत सारे इंडियंस भी हैं जिनको अरबिक और पर्शियन सीखना कंपलसरी सा हो जाता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, तो इसलिए वो भी इसमें एडमिशन लेके ऑनलाइन ये लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जो हमने इसी साल से शुरू किया है। और इसके साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पर भी वो होंगे वो सेंटर्स उसी कंट्री में उनके आसपास बनेंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए दिल्ली में आना पड़ेगा या इंडिया में आना पड़ेगा। तो हमारी जो फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री है उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है, फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास आके ऑनलाइन इस साल से लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं।
0: बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैम, और जिस तरह से SOL अब लगातार नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए कोर्सेज और नई इनोवेशंस के साथ एजुकेशन को इतना इजी बना रहा है, एक्सेसिबल बना रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
2: जी हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसी को कवर कर रहे हैं हम आज, हमारे आज के इस एडिशन में अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। इसमें हम आज पहुंचे कहाँ पे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, हमारे सहयोगी माला नेगी जो हैं उन्होंने अभी की वहाँ की डायरेक्टर से बातचीत, और जैसा कि आपने सुना भाई बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब वैल्यू भी बराबर है, डिग्री भी बराबर मिलती है, देन वाई नॉट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। किसी ने मेरे को कहा था कि भाई लगातार जो है दुनिया ऑनलाइन आती जा रही है, हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग है, हाइब्रिड मोड ऑफ जो है बहुत सारी चीजें और भी हैं जो ऑनलाइन मोड जब इतना ज्यादा जो है लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं, बी इट मीटिंग्स हो गई आपकी या आपकी कोर्ट हियरिंग्स हो गई, तो ऐसे में जो डिस्टेंस वाली चीज है ना, जब वो खत्म करती जा रही है हमारी इंटरनेट की दुनिया, तो फिर पढ़ाई में ही इस डिस्टेंस को बनाकर क्यों रखना आखिर। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां पर पढ़ाई की बात है ना, वहां पर डिस्टेंस बहुत पहले ही कम हो गया था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना हुई थी 1962 में, और इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं आज हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का एक खास एडिशन। और आज के इस एडिशन में फीचर कर रहे हैं हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को। जी हाँ, किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो अपनी स्टेबिलिटी की जो मंजिल है उसे पाने के लिए जो आपकी अप्रोच है ना, उसको फ्लेक्सीबल रखना बहुत जरूरी होता है। और इसी फ्लेक्सीबल अप्रोच का एक नाम है जहां पर पढ़ाई की बात आती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची वहां पर और उन्होंने कैप्चर किया वहां की वाइब को। आइए जानते हैं अगली बातचीत उन्होंने किससे।
5: हाय, तो अभी मैं हूँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लॉन में और यहाँ पर मेरे साथ है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि AI इनको डराता है या इन्हें दोस्त की तरह लगता है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
6: हेलो एवरीवन, मैं महती हूँ एंड आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम SOL। सो आई बिलीव कि AI तो हेल्प ही कर रहा है। सो मैं एक स्किल कोर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में एंड आई बिलीव कि कोडिंग अगर आप करते हैं तो आपने सुना होगा कि

0: लाइक बहुत एरर आते हैं एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उसकी वजह से कोडिंग करना. बट अभी एआई के टाइम में ऐसा है कि आप कोड या तो आपके एरर आ रहे हैं आपके कोड में, तो आपका जो एआई असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है. अदरवाइज आप पूरा कोड एआई से भी लिखवा सकते हैं. एंड अगर आप लाइक वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आप बेसिक जो लेवल है वो आप एआई से करवा सकते हैं एंड फर्दर चेंजेस जो आपको करने हैं वो आप एआई से करवा सकते हैं.
1: आपसे जानना चाहेंगे कि एआई आने वाले समय में आपकी जॉब ले सकता है या आप एआई को उस लेवल पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप एक एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कि मेजॉरिटी के लिए एआई क्या एक वरदान है या फिर ये काफी नुकसानदेह है.
2: हेलो एवरीवन, दिस साइड येनी एंड आई हैव कंप्लीट आई एम एक्चुअली परसुइंग माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एसओएल एंड आई थिंक कि एआई जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो किसी की जॉब ले नहीं सकता, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे हमारे पास तब हम ये भी कहते थे कि कंप्यूटर्स आ गए हैं अब मशीन वर्क कम हो जाएगा, सारे वर्कर्स की जॉब चली जाएगी. बट विद कंप्यूटर्स हमने एक चेंज को अडाप्ट किया और उस चेंज को अडाप्ट करने के बाद हम आज बहुत अच्छे से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं विद इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड अब एआई आया है तो एआई इज़ समथिंग टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे को चीज़ें अडाप्ट करके सीखने को मिलती हैं. हम एक ह्यूमन बिहेवियर इंटरेक्शन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अगर हम एआई की बात करते हैं. सो यस, ये किसी की जॉब नहीं खाने वाला है ऑन अ मेजॉरिटी ग्राउंड टू.
1: ओके, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि एआई की वजह से उनको जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि वो जिस लेवल का मीडियोकर काम करते हैं वो मशीन से अब हो जाता है, तो उनको सांत्वना देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैम, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ग्रोथ इज द की फॉर सक्सेसफुल इंसान, क्योंकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम नॉर्मल जिंदगी में जो रोज सुबह उठ के एक रूटीन वर्क में नहीं सीख पाते हैं. वी शुड लर्न a bit every day.
3: Shobhit this side, pursuing MBA from Delhi University. Ma'am, AI वैसे तो helpful है बहुत ज़्यादा, मैं actually research work भी कर रहा हूँ और बाकी सब काम भी कर रहा हूँ, बट AI कभी कभी mismanagement भी कर देता है. जैसे कि अब मैंने research paper लिखा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने खुद ने लिखी थी, बट वो उसने बता दी कि ये AI से है. तो इस वजह से मेरे को कई बार
1: तो आप खुद ही चोरी कर रहे थे ना? यानी
3: मैंने खुद लिखा है बट एआई से जब उसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट वगैरह मंगाई तो फिर उसमें ये बताया कि ये एआई से कॉपीड है, बट जबकि वो मैंने लिखा है.
1: ओ,
3: तो ये चक्कर हुआ. तो
1: आई होप आप सच कह रहे हो.
3: हाँ, मेरे पास रिपोर्ट है बकायदा.
1: हाँ, okay.
3: तो उसकी वजह से फिर मेरे को लगा कि यार एआई वैसे तो बेनिफिशियल है, रिसर्च में भी थोड़ा बहुत हेल्प करी और लिटरेचर रिव्यू में, बट जो की फाइंडिंग्स मैंने करी वो उसने एआई का बता दिया, तो इस वजह से थोड़ा लगता है कि हाँ.
1: तो मैं चाहूंगी कि इस बारे में थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालिए, क्या जो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स लिखे थे और एआई से उन्होंने रिपोर्ट ली तो एआई ने कहा कि ये कॉपीड है, तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ फेस किया है, कभी इस तरह की चीजें?
2: ऑब्वियसली यस मैम, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिमिलर होती है अगर हम बेसिक से बात करते हैं, तो एआई जो है वो अभी बेसिक मॉडल पे है, वो रन कर रहा है और वो बहुत ज्यादा लर्निंग फेज में है इस समय. तो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें जो हम लिटरेचर वाइज अगर हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं और जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं हम उसी वे में लिखना स्टार्ट करते हैं. अगर हम अपने बहुत ज्यादा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल राइटिंग, तो हम यही ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो लैंग्वेज सिमिलैरिटी हो सकती है. बट एआई अगर हम जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो लिटरेचर रीडर्स होते हैं, रिसर्च पेपर सेलेक्टर्स होते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऐप यूज करते हैं. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऐप राइट नाउ. वो एक ऐप यूज करते हैं जो इन सारे प्लैगरिज्म्स और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है अबव दैट एआई लेवल. तो हम अगर हम खुद अपनी रिसर्च को खुद ही चेक कर रहे हैं ना, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है कि हम सेम कर जाए कि एआई और हम सेम बात कर रहे हैं कभी कभी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं जो हायर अथॉरिटीज पर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीजें हो जाती है.
3: लेकिन कई बार वो ज्यादा मैच हो जाता है ना, तो फिर वो पब्लिश होने के बहुत दिक्कत देता है. अब जैसे स्कोपस वगैरह पे जो है वो 10% ही होता है एसेंशियली एआई, और उससे ऊपर आएगा तो फिर वो पब्लिश नहीं होते. तो इस वजह से मेरे को कई बार लगता है कि ये थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे वाले में 21% आया.
1: ओह गॉड, तो वो तो मतलब आप उस लेवल पर आ गए कि सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो.
3: हाँ, तो वही है कि मतलब की फाइंडिंग्स में इतना सारा एआई था.
1: हाँ,
3: तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि उसे दोबारा रिटर्न करो, दोबारा पब्लिश करने के लिए.
1: जिसने AI बनाया कहीं उसने आपका माइंड लेके AI तो नहीं डिजाइन कर दिया?
3: That's not

0: रीजन एक्चुअली क्या होता है, जो हम लिखते हैं और जो एआई डिटेक्ट करता है वो लगभग नहीं, लगभग चार वर्ड अगर सेम होंगे तो फिर वो एआई दिखाता है। अगर चार वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं ना और वो मैंने लिखे हैं या फिर उनका भी सेम है तो फिर वो एआई दिखाएगा ही दिखाएगा।
1: सो बी केयरफुल, एआई आपके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। आप एआई को पढ़ा रहे हैं और इनकी बातों ने ये साबित कर दिया कि एआई आपसे ही सीख रहा है। थैंक यू सो मच। हाय, तो अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और ये है यहाँ का क्लासरूम। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच, आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज को मिस करते हैं और वो कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये चूज किया कि वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ही अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे।
2: तो मेरा नाम राजगोपालन बालकृष्णन है और मैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन 2026 बैच का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसलिए चूज किया है क्योंकि पहली बात तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर से किया था और एक मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा एकेडमिक्स में जो एक्सपीरियंस था वो मैंने रेगुलर से ऑलरेडी कर लिया। तो मेरा ये सोचना था कि अब जब एक्सपीरियंस हमारा हो गया एक रेगुलर से, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैंने इवन डिस्टेंस से किया है तो मेरे पास एक टाइम भी होगा कि मैं बाकी चीजों में भी अपना ध्यान दूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइड बाय साइड चले। और एक जो चीज़ जो मैं डिफरेंस जो मैंने देखा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो एसओएल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, वो ये है कि रेगुलर कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पे इंटरेक्टिव क्लब्स होते हैं और कुछ डेडिकेटेड क्लब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्किल कोर्सेस और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को भी हेल्प करते हैं, जो एसओएल में ये चीज़ नहीं है। एसओएल में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है।
3: हाय, मेरा नाम मोनालिसा है और मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्टूडेंट हूँ, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की 2026 बैच। और मैंने ग्रेजुएशन जो है रेगुलर कॉलेज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से करा था और एसओएल में आने का मेरा एक पर्पस था क्योंकि जब मैंने रेगुलर कॉलेज से करा तो मैंने देखा वहां पे अटेंडेंस काफी मैंडेटरी है और एसओएल में एक सिमिलैरिटी है कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो हमारा प्रोग्राम का सिलेबस रहता है और जो भी फैसिलिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस को देती है वो सारी फैसिलिटीज जो है एसओएल से हमें मिलती है। और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि हमें टाइम मिलता है हमारे करियर में फोकस करने के लिए कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम बाकी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें भी कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सीए करना चाहता है तो सीए के साथ साथ वो अपने रेगुलर ग्रेजुएशन को भी मैनेज कर सकता है एसओएल से। और यहाँ के जो फैकल्टी है वो हमें काफी गाइड करती है, रैदर कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं बट स्टिल हमारे पास प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ये चीज अवेलेबल करवाते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से उनका गाइडेंस हमारे साथ रहता है। एक्चुअली रेगुलर कॉलेज को मैं मिस नहीं करती हूँ एसओएल में आने के बाद।
1: ओके,
3: ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेगुलर कॉलेज को मिस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि बाउंडेशंस है कि मुझे डेली वहां पे अटेंडेंस प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि मैं फ्रीली अपने हिसाब से चल सकती हूँ कि मैं अपने हिसाब से अपना मतलब फर्दर जो एजुकेशन है उसको भी मैं परस्यू कर सकती हूँ।
4: मेरा नाम स्वाति है, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2026 की बैच की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैंने जो ग्रेजुएशन करी है ना वो बीकॉम में करी है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, वो भी एनसीवेप था। लाइक उसमें क्या होता था ना, उसमें सैटरडे संडे कॉलेज जाना होता है। और फिर अब जब मैंने एमबीए स्टार्ट करी तो उसमें ये था ना कि उस टाइम मैं वर्किंग थी तो फिर मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने एमबीए चूज करी है। मैम रेगुलर कॉलेज को तो इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि उसमें वो जो होता था उसमें हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते थे, जैसे उसमें प्रोग्राम होते थे, स्किल्स कोर्स होते थे और भी क्लब वगैरह होते थे, उसमें हम अपने बिल्ड कर सकते थे करियर को, वो सब मिस करती हूँ। लाइक उसमें कॉलेज जाना 8 to 6 पूरा दिन मतलब टाइम उस पर स्पेंड करना, कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलना, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सब मिस करती हूँ मैं रेगुलर अगर मैं होती तो।
5: हाय, मेरा नाम विद्या अरोड़ा है एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से की थी, सेम फ्रॉम एनसीवेप। एंड अभी जो है मैंने एमबीए इन फाइनेंस में यहाँ से कर रही हूँ DOSOL से। सो बेसिकली मेरा एसओएल चूज करने का मोटिव एक ही था क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बिकॉज मेरे शूट्स वगैरह होते हैं तो मुझे वो भी सब मैनेज करना होता था, प्लस मैं एंटरप्रेन्योर हूँ जिसमें मेरी अपनी लाइब्रेरी है, मुझे वो भी मैनेज करनी होती थी। एंड जब मैं यहाँ पे हूँ और लाइक थर्ड सेमेस्टर में जब यहाँ पे इंटर्नशिप चाहिए थी तो हमने इंटर्नशिप करी एंड उसमें मेरी बहुत हेल्प हुई एस वेल में कि अगर मैं वहाँ रेगुलर होती या रेगुलर कॉलेज से कर रही होती तो मैं इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाती। जैसे मैं पहले अगर हम कुछ भी रेगुलर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, अब वो अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको दूसरी चीजें छोड़नी पड़ेंगी।

0: तो मैं वो चीज सैक्रिफाइस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने SOL चूज किया. एंड बट मैं SOL में आके बहुत खुश हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सन सर, अभिलाषा मैम, अशोक सर, तो वो बहुत लाइक जितना अच्छा वो पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर में भी शायद मैं उतना अच्छा पढ़ पाती. अगर मैंने संडे संडे क्लासेस ले रही हूँ तब भी मैं इतना अच्छा गेन कर पा रही हूँ कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो रही कि ये क्या है या वो क्या है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने होते हैं, वो चीजें भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर अप होती हैं. दूसरी चीज, अगर मैं रेगुलर में होती तो रेगुलर में बस मैं ये सोचती हूँ कि वहां पे रेगुलर जाती और वहां पे कुछ क्लब्स होते हैं वो ज्वाइन करती, वहां की मेंबर बनती, वहां पे कुछ ड्रामा शोज होते हैं वहां पे भी मैं जा सकती थी. तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैं थोड़ा मिस करती हूँ. और वहां पे स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे मिलती, वो मुझे बाहर लेकर जाते, वहां पे इंटर्नशिप्स कराते, वहां की प्रैक्टिकलिटी मैं सीखती, तो वो चीजें मैं थोड़ी मिस करती हूँ. बट स्टिल मैं DOSL में भी बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है. वो सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाने के मोटिव से ही नहीं आते, वो एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं, तो जो आपका आगे आने वाली लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प मिलती है.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन.
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग. हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. वहां के स्टूडेंट्स की इतनी सारी बातचीत अभी आपने सुनी, कहीं आपको लगा कि इतने हफ्तों से जो हम यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं तो किसी भी तरह से स्टूडेंट्स जो है ना सब जगह एक ही तरीके के हैं, स्टूडेंट्स जो है सब जगह अपनी पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में कर लेना चाहते हैं और इन सब चीजों को पाने के उनके सबके अपने अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं, और इन्हीं में से एक तरीका है जिसमें फ्लेक्सीबिलिटी जुड़ी हुई है और वो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसे कवर कर रहे हैं हम आज के हमारे इस एडिशन में. अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो.

0: तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट। नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहां के स्टूडेंट से की बहुत सारी बातचीत, लेकिन अभी जरा ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि थोड़ी बातचीत अभी बाकी है। आइए जानते हैं कि अगली बातचीत उन्होंने किससे की।
5: हाय, तो अभी मैं हूँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है इनके साथ अब कुछ मजेदार इंटरेक्शन होने वाली है। छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम इनके साथ खेलेंगे, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं।
6: हाय, मेरा नाम हिमांशु।

0: मैंने अभी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बीकॉम में एडमिशन लिया है।
1: हेलो, मेरा नाम दीक्षा है और मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ।
2: ओके।
3: हेलो, मेरा नाम लक्की शर्मा है, मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टूडेंट हूँ बीकॉम से।
2: तो अब आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। करेला या घिया?
0: घिया।
2: क्यों?
0: क्योंकि करेला कड़वा होता है।
2: अच्छा, और घिया मीठा होता है?
0: घिया थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, खाने में दिक्कत नहीं होती।
1: करेला, बिकॉज वो मुझे टेस्टी लगता है अगर उसको बहुत अच्छे से बनाया जाए तो।
2: एक और एक दो या ग्यारह?
1: अगर आप बता रहे तो शायद ग्यारह, अगर मैं बोल दूँ तो शायद दो, अगर प्लस करके बताऊँ तो।
2: अच्छा, मतलब आप गणित की अच्छी स्टूडेंट रही हो?
1: नहीं।
2: अच्छा,
1: मुझे लगा आपने एज अ उस भी यहाँ पे पूछा, एक एक दो ग्यारह या फिर वन प्लस टू वन इस टाइप का कुछ।
2: अच्छा, मतलब इन एनी केस इनको ये बताना है कि आई एम करेक्ट। ओके, आप बताएं।
0: एक एक दो भी होता है, एक एक ग्यारह भी होता है। वैसे अगर एक एक अलग से देखे तो ग्यारह हो जाएगा और एक एक प्लस करें तो दो हो जाएगा।
2: अच्छा, ओके। 10 लाख या सोशल मीडिया, क्या चुनोगे?
3: 10 लाख।
0: दोनों ही नहीं।
2: दोनों ही नहीं, नया क्वेश्चन कहाँ से लाऊं दोस्त? फिर भी मतलब कुछ भी नहीं चुन रहे हो आप? आपके पास 10 की जगह 20 लाख और सोशल मीडिया की जगह और भी कोई बड़ी चीज है?
0: अलग ही हो जाएगा फिर। अगर पैसा चुनेंगे तो सब बोलेंगे कि पैसा चुन रहा है, ये लालच हो।
2: अच्छा,
0: अलग हो जाएगा।
2: अरे हम जमाने की बात सुनते हैं।
1: सोशल मीडिया एंड लाइफ, अगर तीसरा अगर आप ऑप्शन देते तो ऑफ कोर्स मैं लाइब्रेरी चूज करती, क्योंकि वहाँ पे हम बैठ कर काफी सारा अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा पीस मिलता है। ठीक है, एंड फिक्शनल चीजें भी हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। बट इस केस है तो सोशल मीडिया को हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं पैसे के बिहाफ पे।
2: ओके, मतलब 10 लाख या सोशल मीडिया की जगह
1: सोशल मीडिया?
2: सोशल मीडिया। ओके, स्किल कोर्स या ऑनर्स कोर्स?
1: स्किल कोर्स।
2: ओके,
0: ऑनर्स कोर्स।
2: क्यों?
0: क्योंकि उसमें हम स्पेशल एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें नॉलेज की ज्यादा पकड़ हो जाती है।
2: ओके,
3: स्किल कोर्स।
2: क्यों?
3: स्किल कोर्स इसलिए ताकि हम कोई बढ़िया स्किल सीख पाए।
2: ग्रेड्स या परसेंटेज?
3: ग्रेड्स।
0: परसेंटेज में पता चल जाता है कि हमारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब पता चल जाता है।
2: ओके,
1: ग्रेडिंग सिस्टम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज इसमें एज अ ओवरऑल अगर देखा जाए किसी बच्चे के 60% आ रहे हैं तो वो या 70 आ रहे हैं तो वो ए प्लस में या फिर ए ग्रेड में काउंट हो जाता है, तो इससे में ये भी काफ़ी बेटर है।
2: पापा की परी या मम्मी का कछुआ?
1: हाँ, पापा की परी बेटर है, वो ऑलवेज हमारी साइड लेते हैं, दैट्स व्हाई।
2: ओके,
0: मम्मी का कछुआ सही है, पापा की परियां तो अलग ही जाती हैं।
3: मम्मी का कछुआ।
2: मम्मी का कछुआ, पापा की परी क्यों नहीं?
3: पापा थोड़े डेंजर है मेरे।
2: पापा डेंजर है। जॉब या स्टार्टअप?
0: स्टार्टअप। अभी मैं वैसे तो मैं बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन वैसे मेरा मन था कि मैं LLB कर लूं, और मेरे पापा अफकोर्स वैसे लॉयर हैं, तो मैं सोच रहा था उस फील्ड में जाने की, लेकिन आ गया इसमें।
1: जॉब? क्यों? जॉब में मुझे ऐसा स्टेबिलिटी दिखी, स्टार्टअप में एज अ प्रोबेबिलिटी में चलता है, अगर हम किसी जॉब के लिए ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वहाँ अगर फिक्स स्टेबिलिटी हो जाती है तो आप फाइनेंशियली प्रॉपर टेंशन फ्री हो जाते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा स्टार्टिंग में रिस्क होता है, पर जॉब अगर आप किसी अच्छी जगह कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मी।
2: ओके, भारत या विदेश?
1: भारत।
0: भारत।
2: वाह,
3: भारत।
2: भारत, तो चलो इसी बात पे एक नारा लगाते हैं। भारत माता की
4: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
4: जय।
2: क्या बात है। चलो इसके बाद अगला सवाल, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी? अगर भारत माता की जय बोल रहे हो तो क्या चाहिए?
3: रेस्पॉन्सिबिलिटी।
2: रेस्पॉन्सिबिलिटी, पक्का? क्या बात है, आपको क्या चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी?
0: रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए।
2: ओके,
1: रेस्पॉन्सिबिलिटी।
2: ओके, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, पैसा, फ्रीडम, फेम या हैप्पीनेस?
1: हैप्पीनेस।
0: हैप्पीनेस।
2: पैसा नहीं?
0: पैसा रहेगा तो बिना हैप्पीनेस रहेगा।
2: अच्छा,
3: फ्रीडम भी और हैप्पीनेस भी।
2: ओके, गुड, थैंक यू सो मच।
5: ख्वाब अलग हैं, रास्ते अलग हैं, जिंदगी के मायने अलग हैं, फिलॉसफी भी जो है ना, इन सब की फर्क है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद, चाहे इनके सपने अलग हों, चाहे जिंदगी के रास्ते अलग हों, कॉमन ग्राउंड है एक, और वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जगह जहां पे इन सपनों को पंख मिलते हैं, इन हौसलों को उड़ान मिलती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग आज का एडिशन था बस यहीं तक। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और वहां से उन्होंने पहुंचाई सारी बातचीत आप तक, और उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहा। फिलहाल यहाँ पे बातचीत को, इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना।

होगा, समय इजाजत नहीं देता है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अगले हफ्ते अल्फाजन कैंपस कॉलिंग एक और नए कोने को रोशन करेगा यूनिवर्सिटी का आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन और कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड

0: करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 42 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 3,590 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
1: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। यह बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और खेलों में भारत ने गोल में आज 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल

0: मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said 4

0: শ্ৰোতাসকলে ইমানপুৰে একক ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক সংস্কৃতত বাতৰি, ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकचत्वारिंशदधिक त्रयोदश सहस्रकोटि रूप्यकाणां पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेल परियोजनाः एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृद्ध्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं 65 अधिकैकशतं धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य 41,30,000 करोड़ रूप्यकाणां पञ्च प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
1: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 8 जनपदान् समावेक्ष्यन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेल मार्गः, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेल मार्गः, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेल मार्गः, सहिव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेल मार्ग संजाले प्रायः 10,400 किलोमीटर परिमितस्य नूतन मार्गस्य योगः भविष्यति।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है।

0: नगरे रामपुरे सहारनपुरे च विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तन निदेशालयेन सहसान्वेषणं प्रवर्तितम्। प्रवर्तन निदेशालयेन ज्ञापितं यत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य 2002 वर्षे प्रवर्तितस्य अधिनियमस्यान्तर्गतम् अन्वेषणं कृतमिति। इदम् अन्वेषणं स्वायत्त करदातृभिः माध्यमैः सर्वकारीय अनुबन्ध नीतेः कथित विचलनस्य ततः प्राप्तस्य धनस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा परिसरस्य कृते सम्पत्ति निर्माणे कथित उपयोगस्य च विषये वर्तते। लखनऊ नगरे स्थितः मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरः, यस्य मुख्य न्यासी रूपेण उत्तर प्रदेशस्य पूर्व मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री आजम खान इत्येषः परिवारस्य सदस्यैः सह कार्यं निर्वहति। रामपुर मण्डले मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयं सार्वजनिक विश्वविद्यालयं च प्रचालयति। प्रवर्तन निदेशालयेन विज्ञापितं यत् अन्वेषणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अपराध जनित धनस्य उद्घाटनं, वित्तीय अभिलेखानां अथ प्रलेखानां संग्रहणं, सर्वकारीय निधेः उपयोगेन सम्बद्धानां डिजिटल साक्ष्याणां प्राप्तिश्च अस्ति। कोलम्बिया देशे 4.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतकानां संख्या 12300 यावत् वर्धिता। प्रायः 11.6400 यावत् जनाः व्रणिताः, यस्मिन् 90.2 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति इति सूच्यते। भारतेन प्रथम निकषस्पर्धायां श्रीलंकादलं 65.1 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: বাতৰি পিছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। আজি ষ্টুডিঅ'ত আছো মই ৰুজি মুদৈ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো মৃন্ময়ী ঘোষৰ কণ্ঠত ভজন।

0: দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাত সাৰ বিক্ৰীৰ বাবে নতুন ডিজিটেল ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে। জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত পৰীক্ষিত থাউদম, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত অতুল কাঠাৰ আৰু জিলা কৃষি বিষয়া মইনুল হকে আজি সাৰ বিক্ৰীৰ নতুন এপ মুকলি কৰে। এইটোৰে পৰা জনসাধাৰণে সাৰ বিক্ৰী এপৰ জৰিয়তেহে সাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। জিলা আয়ুক্ত পৰীক্ষিত থাউদমে কয় যে কৃষকৰ মাটি আৰু শস্যৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এপটোৱে প্ৰয়োজনীয় সাৰৰ পৰিমাণ বিষয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। ইয়াৰ পিছত এপটোৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা কিউ আৰ কোড ব্যৱহাৰ কৰি অনুমোদিত বিক্ৰেতাৰ পৰা কৃষকে সাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সাৰৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ, কলা বজাৰ আৰু অনিমীয়া বিক্ৰী ৰোধৰ লগতে প্ৰকৃত কৃষকে সাৰ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষক পঞ্জীয়ন থকা লোকেহে এনেদৰে সাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 22,000 কৃষকে বৰ্তমানলৈকে পঞ্জীয়ন কৰিছে। ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি কলকাতাৰ ছল্টলেক ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত ইষ্ট বেংগল এফ চি স্পৰ্টিং ক্লাব দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন খন্তেক পাছতে আৰম্ভ হ'ব। প্ৰতিযোগিতাত কাইলৈ শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি 17 বাৰৰ চেম্পিয়ন মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ চমুকৈ পুনৰ এবাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক অধিক ক্ষমতা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনাৰ অন্বেষণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। অহা 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত 3টা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ আৰু লোকপিয়লৰ দায়িত্বত নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাৰস্পৰিক বদলিৰ নিৰ্দেশনাত সংশোধন, 14 দিনৰ ভিতৰত নতুন স্থানত যোগদান কৰাৰ চৰ্ত প্ৰত্যাহাৰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि

0: पे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The minister said the government has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonparsa section of National Highway 22 to 4-lane standard in Bihar.
2: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
1: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnaw was addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive exams. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address. President Draupadi Murmu today advised public servants to use social media platforms not only to inform and engage citizens but also to listen to their concerns, understand them and respond appropriately. She stressed that when information travels rapidly, accuracy, credibility and public interest must always guide official communication. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at the Rashtrapati Bhavan.

0: নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজি আপোনাক এনেকুৱা এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো যিগৰাকী বিহাৰৰ নালন্দাৰ যুৱক সোনু। আৰু সোনুৱে 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা তেখেতে এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এখন চাইকেলেৰে। আৰু সেই চাইকেল যাত্ৰাৰ তেখেতৰ সংগী হৈছিলে এটা কুকুৰ, নাম হৈছে চাৰ্লি। চাৰ্লিক সোনুৱে কেনেকৈ পালে এই কথাখিনি পাতিম। এই যাত্ৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল সোনুৰ পৰা আমি পোনে পোনে শুনিবলৈ যত্ন কৰিম।
1: मैं अपना जर्नी 3 मार्च 2024 को स्टार्ट किया था अकेले एक नॉर्मल साइकिल से बिहार नालंदा से ही, ठीक है। एंड वहाँ से अपना बस ट्रैवल का जो मेरा सपना था वो बस पूरा करने के लिए लद्दाख में निकला था। एंड जस्ट नॉर्मल साइकिल से मेरा माइंड था कि मैं बस ट्राई करता हूँ, क्या मेरा सपना है ट्रैवल करने का, मैं ट्रैवल के लिए बहुत कुछ झेल सकता हूँ। एंड मैं लद्दाख पहुंचा बहुत मुश्किल से, मतलब 2 महीने में मैं कितना दिन भूखे रहूंगा, कितना दिन सोया भी नहीं होऊंगा अच्छे से, ना मेरे पास उतने अच्छे टेंट भी नहीं थे। मैं बहुत 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था ऐसे ही नॉर्मल साइकिल से। उसके बाद मैं दिल्ली में 2 वीक्स काम करके टेंट लिए ताकि मैं लद्दाख में थोड़ा सर्वाइव कर पाऊँ अच्छे से। तो वहाँ टेंट एंड स्लीपिंग बैग लेके मैं लद्दाख खारदुंगला पास एक नॉर्मल साइकिल से पहुंचा। 2 महीने लगे मुझे बिहार नालंदा से, एंड तब तक मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। लद्दाख में मैं सोनम वांगचुक सर से मिला, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो 1 वीक, फिर उसके बाद आराम से जाओ। तो मैं उनके पास रुका 1 वीक, एंड अच्छा लगा उनके पास रुक के बात किया। फिर उन्होंने लास्ट डे मुझे सरप्राइज दिया, एक ब्रांड न्यू साइकिल, गियर का साइकिल दिया, क्योंकि मेरा साइकिल जो था नॉर्मल साइकिल था एंड वो पहाड़ों में चलता नहीं है, मैं पैदल ही चला था, 400 किलोमीटर पैदल चला था लद्दाख जर्नी करते वक्त। वो साइकिल से फिर बहुत लोग मेरे जर्नी में जुड़े, बहुत लोग थोड़े थोड़े पैसे देते थे मंथली ताकि मैं अच्छे से ट्रैवल कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरा था कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ। एंड लोगों को मेरे पे बिलीव था कि ये कुछ करेगा आगे जाके, तो लोग मेरे जर्नी में जुड़े। एंड फिर मैं वो साइकिल से स्टार्ट किया, मैं हिमाचल उत्तराखंड ट्रैवल किया, एंड इसमें मेरा 4 मंथ्स गया, 4 मंथ्स मैं ट्रैवल किया।

एंड 4 मंथ्स के बाद मुझे यूपी में ये छोटा सा पप्पी जो मैं दूर से देख रहा था, तो मुझे लगा ये एक्सीडेंट में मरी हुई है। तो वहां पे मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा, वो दिन था 3 जुलाई 2024, ठीक 4 महीने बाद जब मैं जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक 4 महीने बाद मुझे चार्ली दिखी जिसका एक पैर पूरा टूट रखा था, कोई एक्सीडेंट करके गया था रोड पे हाईवे पे। मैं इधर MP तरफ जा रहा था, तो यूपी गाजियाबाद में दिल्ली से बस थोड़ा पीछे ही ये मिली थी मुझे। तो मैं इसको बस साइड करने गया एंड देखा कि ये तो जिंदा है। तो मैं छोटा सा बैग था मेरा जो पीठ पे रखता था वो आगे लिया एंड इसको लेके मैं 60 किलोमीटर उस दिन ऐसे ही साइकिल चला के एक जो मेरा जान पहचान के थे मैं वहाँ पे लेके गया, इसको ट्रीटमेंट करवाया एंड ये वहाँ पे कुछ दिन के बाद ठीक हो गई। मतलब एक पैर से वो लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा चल रही थी। फिर मैं सोचा इसको वहीं पे रख दूंगा रिलेटिव्स के पास में। तो वहां जब इसको रख के मैं साइकिल लेके जाने लगा, वो 3 पैर से मतलब ऐसे दौड़ते हुए एंड मेरे पास आई एंड मेरा पूरा फेस चाटा, पूरा एकदम प्यार किया कि जैसा लग रहा था ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो वैसा करके। एंड मेरे भी आंखों में आंसू हो गए, इसके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया था तो मेरे भी आंखों में आंसू हो गया। फिर मैं सोचा इसके साथ भी कर सकता मैं ट्रैवल, मैं संभाल सकता हूँ, छोटा सा बच्चा ही तो है, पप्पी तो है, संभाल सकता हूँ, कहीं छोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने पास ही रखूँ, जब मेरा जर्नी खत्म हो जाए तो मैं लेके जाऊँ इसको घर पे। वैसा करके मैं छोटा सा कैरेट स्टार्टिंग में अपना हैंडल में ही छोटा सा वो सब्जी का कैरेट होता है मैं वो बांध दिया बंजी रोप से एंड उसी में ही हम लोग ट्रैवल करते रहे। जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता था उससे बहुत ही अच्छा लगने लगा, मेरा एक कंपेनियन मिल गया जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे एकदम बहुत समझने लगा, अच्छा लगता था मुझे इसके साथ ट्रैवल करके। लोगों का और इंटरेक्शन बढ़ गया कि वाह डॉग के साथ ट्रैवल कर रहा है, लोग कितना लोग मुझे देख के बहुत लोग डॉग अडॉप्ट किया, तो अच्छा लगता है। मैं एक क्रूल्टी के लिए भी बोलता हूँ लोगों को कि अच्छा बी काइंड टू एनिमल्स, बहुत अच्छा से व्यवहार करें एनिमल्स को, मारे ना, अगर आप कुछ खिला भी नहीं सकते तो कम से कम मारो मत, वैसा करके मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ। एंड मुझे फिर तभी से मेरा दिमाग में आ गया कि मैं इससे मिलने के बाद, पहले था मेरा कि मैं कुछ करूँगा एनिमल्स के लिए लेकिन खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं एनिमल शेल्टर खोल सकता हूँ, लेकिन इसके मिलने के बाद खुद पे लगा कि भाई कोशिश करते हैं, होगा नहीं होगा बस ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में। मैं कोशिश करता हूँ कि एनिमल शेल्टर मैं बना पाऊँ बिहार नालंदा जैसे जगह पे, क्योंकि मैं पूरा बिहार ट्रैवल किया हूँ एंड बहुत ही मतलब वहाँ पे क्रूल्टी केसेस होते हैं, शेल्टर नहीं है, डॉग्स का ट्रीटमेंट, छोटा सा घाव हो जाता है धीरे धीरे बढ़ते हुए, वो एक दिन मर जाता है। तो ये सब देखते हुए मैं सोचा एनिमल शेल्टर बनाने के लिए मैं पूरा इंडिया राइड करता हूँ चार्ली के साथ में। फिर वहां से मैंने यूपी से जब मैं स्टार्ट किया तो दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया इसके साथ में ही, राजस्थान से फिर मैं MP, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर मैं तमिलनाडु धनुषकोडी तक गया और रामेश्वरम तक एंड आसपास के जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग मैं वो भी कंप्लीट कर रहा था, ताकि जब मैं ये जर्नी करूँ तो लोगों को भी बोल सकूँ कि मैं ये सब दर्शन भी किया हूँ। तो ये सब फिर मैं आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश से फिर मैं इधर फिर महाराष्ट्र इंटर किया, फिर यूपी किया, फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे करके मेरा बहुत सारा स्टेट्स हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सब भी ट्रैवल किया मैंने। तो मेरा पूरा साइकिल से मैंने 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल किया। मैंने वेस्ट बंगाल ट्रैवल किया, सिक्किम ट्रैवल किया, तो लास्ट मेरा सिक्किम जर्नी था, वहाँ पे मेरा रिब्स में पेन हो गया। रिब्स में पेन होने के बाद मेरा जर्नी मतलब साइकिल ऐसे, मैं सिक्किम का रोड बहुत अपहिल है तो मैं पूरा वेट के साथ ऐसे धक्का मार के जा रहा था, तभी मेरा ये इंजर्ड हो गया रिब्स। तो डॉक्टर से सबसे दिखाया, वो बोला अभी तो साइकिलिंग तुमको बंद करना होगा। तो मैं 2 महीने 2.5 महीने अपना ट्रीटमेंट करवाया एंड फिर एक मैम आए द जारा एनिमल प्रोजेक्ट, वो क्या करते हैं फीमेल डॉग का आइसोलेशन करवाते हैं, वो 17,000 डॉग का आइसोलेशन करवा चुके हैं वो द जारा एनिमल प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ के ये द जारा एनिमल प्रोजेक्ट को तुम लोगों तक पहुंचा सकते हो, आइसोलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बर्थ कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है फीमेल डॉग मेल डॉग के लिए, तो ये लोगों को तक पहुंचा सकते हो एंड बदले में मैं तुम्हें एक स्कूटी स्पॉन्सर करता हूँ। तो वो जब मैं स्कूटी से सोचा कि हाँ अच्छा कॉज के लिए जुड़ सकते, तो मैं फिर साइकिल अपना सिलीगुड़ी में ही रख के मैं स्कूटी से जर्नी कंटिन्यू किया एंड बहुत ही अच्छा अभी तक रहा। मैंने अभी स्कूटी से मेरा 2 ही स्टेट्स हुआ है, मैं असम पूरा ट्रैवल किया, नागालैंड ट्रैवल किया हूँ एंड स्कूटी से मैंने 3,000 किलोमीटर कंप्लीट किया। अभी तक मेरा 19,000 किलोमीटर हो चुका है, 90 to 20,000 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका पूरा इंडिया में एंड 19 स्टेट्स 3 यूनियन।

0: टेरिटरी ट्रैवल कर चुका हूँ मैं चार्ली के साथ में फॉर ए कॉज कि मैं एक एनिमल शेल्टर बना सकूँ। एंड इस रास्ते में मैं फंड रेज कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ कि मैं जब एनिमल शेल्टर खोलूँ तो लोग मेरे सपोर्ट करें एंड एक बिहार में अच्छा शेल्टर हो जहाँ ट्रीटमेंट हो सके डॉग्स का, अच्छा से केयर हो सके, मैं फीड करा सकूँ, जो भी डॉग्स थे उसको ला के अपने पास रख के उसका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। तो इसीलिए मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ एंड अभी कुछ स्टेट्स और बाकी है, फिर इसके बाद मेरा जर्नी खत्म होगा, फिर मैं बिहार नालंदा में शेल्टर जाके मनाऊंगा।
1: बातत बहु बाधा बिकिनी किंतु अति मरम लगा पुआलीटू जाक चार्ली बुली माते सोनुए चार्लिक लगत लु ए जी यात्रा ए यात्रात सोनु जेतिया आगबाढ़ी गईसिल ए यात्रा जन तेर बाबे आरु बेसी सुखर आनंददायक होई पड़िसिल। सोनु आरु चार्ली होई पड़िसिल अंतरंग बंधुर दरे। যেতিয়া সোনু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এখন চাইকেল লৈ, তেতিয়া বাৰু তেখেতৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বাধা দিয়া নাছিল নে?
0: ঘৰ সে এলাও কা ইয়ে কি মই মম্মী পাপা সে বচপন সে মই দূৰ ৰাও, দাদা দাদী কে পাছ মই পলা বড়া, জব দাদা এক চলে গে তিন সাল পহলে ও চল গে তো তবি মেৰা দিমাগ মে সব আয়া, তবি মই ট্ৰাভেল ভি স্টার্ট কিয়া, ক্যোকি কিতনা ভি প্ল্যান কৰ লো লাইফ প্ল্যানিং কে হিসাব সে নহীঁ চলতা হ্যায়, কভি ভি কুছ ভি হো সকতা হ্যায়। तो इसीलिए मैं निकल गया था ट्रैवल पे एंड मम्मी पापा बिलीव करते कि कहीं भी रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत काम किया हूँ, जब बहुत कर्ज था तो मैंने कर्ज उतारने के लिए पैसे बहुत बाकी थे फैमिली के पास, तो वो पैसे लेने के लिए बहुत लोग घर पे आते थे, कुछ बोलते थे, तो देखते हुए मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं एक साल पेट्रोल पंप पे काम किया एंड फिर मैंने 6 महीने दिल्ली में फ्रूट्स भी बेचे हैं ठेला पे, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं ठेला का भी चलाऊंगा जब पढ़ाई कर रहा था। तो
2: पढ़ाई कब तक किया?
0: मैं बीए थर्ड ईयर तक पढ़ा एंड फिर जब मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था तो मेरा फाइनल एग्जाम रह गया था, छूट गया था, तो ड्रॉप आउट थर्ड ईयर तक।
1: सोनू ए भ्रमणर जी समयसुआ ए समयत विभिन्न ठाइलै जुआ होइसे, विभिन्न राज्यलै विभिन्न ठाइत विभिन्न धरण व्यक्तिक लग पुआ होइसे, तेलोकर होइते होइतु किसमान विशेष अभिज्ञता होइसे, ভাল লগা কিছু মুহূর্ত পার করা হৈছে, জিদরে গুৱাহাটীলৈ আহুতে চন্দ্ৰানী দাসক লগ পোৱা হৈছে, আমি লগ পাইছো চন্দামিতা অভয় তেওঁলোকে লগ পাইছে, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ পাই নিশ্চয় কিবা বিশেষ অভিজ্ঞতা হৈছে, আজি নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলক কিবা কবলৈ মন যাব সেই বিষয়ে।
0: ওকে, স্পেশাল ইয়ে হে কি জেসে মই অলগ অলগ ষ্টেটছ মে ট্ৰাভেল কৰতা হু এণ্ড ইতনে কাইণ্ড লোক মিলতে হে না ইণ্ডিয়া মে, স্পেশালি কি বহুত কাইণ্ড লোক, জেসে মই অভি অসম কা বাত কৰো, অভি মই অসম মে ট্ৰাভেল কৰো তো অসম কা বাত কৰো, ক্যোকি इतने अच्छे लोग हैं, मैं हर जगह कैंपिंग टेंट लगाता हूँ पेट्रोल पंप पे, लेकिन मैं कम से कम 1.5 से 2 महीना असम में रहा, इधर उधर ट्रैवल किया, पूरा असम ट्रैवल किया, इतने फ्रेंडली लोग वेलकमिंग लोग हैं कि वो खुद भी घर पे बुला लेते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे उनका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, सब कुछ वो सोचते ये मोमेंट है ना जो वो स्पेशल है, मेरे साथ छोटा सा ही टाइम उनको उनके लिए बिताना ना उनको बहुत स्पेशल बना देता है एंड मेरे लिए लगता है कि मैं कहाँ था 2 साल पहले एंड अभी मेरे साथ छोटा सा ही टाइम कोई बिताता है तो उनको बहुत स्पेशल लगता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, वो कैसे वो लाइफ जी रहे हैं वो सब सीखता हूँ एंड बहुत कुछ ये जर्नी में बुरा भी हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं अच्छे लोगों को ध्यान में रखता हूँ, अच्छे लोगों को याद रखता हूँ एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये जर्नी ना हम लोग को, मतलब मैं निकला था अकेले लेकिन इतने लोगों को जोड़ चुका है ये जर्नी, तो बहुत ही स्पेशल है ये मेरे लिए, तो ये लाइफ टाइम के लिए एकदम सीख जैसा है कि।
1: সোনু, অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ ভ্ৰমণৰ সময়ত যোৱা হৈছে নহয় জানো, আৰু এই সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছো শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট বানৰ কবলত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এইখিনি সময়ত আমি গম পোৱা মতে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলা ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত পথৰ কুকুৰৰ বাবে আশ্ৰয়স্থল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যি এক সপোন লৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, এই যাত্ৰাত সহায় হোৱাকৈ যিখিনি ধনৰাশি অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে দিছে তাৰ এক বুজন অংশ নিজে গৈ শিৱসাগৰত বানপীড়িতসকলক সহায় কৰা বুলিও আমি গম পাইছো, সেই বিষয়ে যদি শ্ৰোতাসকলক জনাই ভাল লাগিব।
0: মই তো বহুত আমিৰ নহয় হওঁ, মেৰে পাছ বহুত জ্যাদা পইচা নহয় হে, লেকিন মই জব অসম মে গয়া এণ্ড ও দেখা কি এক টাইম মতলব উনকে পাছ খানে কে লিয়ে ভি কুছ নহীঁ থে, মই বহুত অন্দৰ অন্দৰ তক গয়া, আপনা স্কুটি সে ভি থোড়া গয়া অন্দৰ, ফিৰ বোট এ সবসে অন্দৰ গয়া এণ্ড জব মই অসম মে ট্ৰাভেল কিয়া তো বহুত লোক मुझे प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के, मैं शिव सागर में रुका था, जो शिव सागर के आसपास गांव है मैं उधर भी रुका था जब फ्लड नहीं था, तो बहुत लोग फैमिली मुझे जानते थे, नेपाली खुती से आसपास के जगह जैसे नाजीरा ये सब जगह पे मैं रुका था एंड मैं वो सब देख के इतना

0: हैरान था कि ऐसे कैसे लोगों का घर चला गया, खाना नहीं है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया असम में फंड रेज में मिला था। लोग छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके 1.5 महीने में उन्होंने दिया था। तो बहुत तो नहीं, कम से कम मैंने उसका 50% मैं कुछ कुछ सामान लेके, खाना जैसे बहुत लोग मेरे से जुड़ गए थे तो उनको मैं दे दिया, दाल चावल और कुछ कुछ जैसे धूप बत्ती कैंडल्स, ये सब जो कि इम्पोर्टेंट सामान है जो अभी जरूरी है उनको, उनके लिए मैं अपना 50% दिया। एंड वो कहीं ना कहीं छोटा छोटा ना कहीं काम आया होगा। तो मैं इसीलिए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाला है, मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास था उस टाइम, मैं नहीं कुछ कर पाया, तो ये सोच के मैं उनको थोड़ा हेल्प किया। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि ये फंड रेज तो हो जाएगा, मैं ये जर्नी करते करते पूरा एफर्ट मार के लोगों से कनेक्ट करके कर लूंगा ये फंड रेज वाला कंप्लीट, लेकिन ये उनके लिए जरूरी था अभी, तो इसलिए मैं किया इंसानियत के नाते वैसा।
1: 11 আগষ্টৰ দিনা গুৱাহাটীত আমি সোনু আৰু চাৰ্লিক লগ পাইছিলো। গুৱাহাটীত থকাৰ সময়ৰ যি অভিজ্ঞতা সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচৰাত সোনুয়ে কয়,
0: গুৱাহাটী মে হ্যাঁ জো মুজে এক দিদি ফলো কৰতে থে 2 মহিনে সে এণ্ড ও মিলনা চাহতে থে মেৰে পাছ তো उनसे मिलने आया एंड बहुत ही अच्छा लगा उनके पास। तो मैं अभी चंद्रानी दी के पास हूँ एंड बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके एंड बहुत लोगों से ये कनेक्ट करवाए मुझे एंड आगे फ्यूचर में भी ये मेरे से अच्छा है, मतलब फ्यूचर के लिए भी काम आएंगे बोल सकते हैं कि मेरा जो एनिमल्स से प्यार करते हैं वो रिलेट कर पाता है कि हाँ एनिमल्स के लिए करना चाहता है कुछ एंड इनका हेल्प करके मुझे दिल का सुकून मिलेगा, तो वो उनका थॉट है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। अगर नहीं मिल पाता तो मुझे ही कहीं ना कहीं रिग्रेट होता कि काश मिल लेता। तो भगवान सबको मिलाते हैं एंड उनके थ्रू ही बहुत लोगों से मैं मिल पाया,
2: जो
0: बहुत
2: अच्छा चंद्रा
0: दी जो कि अभय भैया भी मिले मुझे जो कि यहाँ पे रेस्क्यू का काम करते हैं डॉग्स के साथ। अच्छा, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग से मिलने से ना बहुत ही अच्छा लगता है कि जेन्युइनली लोग डॉग के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ मुझे कोई गाइड करने वाला, मुझे मतलब मैं यहाँ जर्नी तक आया हूँ खुद से सीखते हुए, गिरते हुए पढ़ते हुए उठते हुए ऐसे ही आया हूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं था अभी, लेकिन इतना लोग जुड़ चुके हैं एनिमल शेल्टर के लिए गाइड करने वाले हैं, एनिमल्स को कैसे आप अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, अच्छे से रख पाओगे, रेस्क्यू कर पाओगे, ये सब गाइड करने वाले, तो अच्छा लगता है लोगों से मिलके बात करके। बहुत सही।
1: गुवाहाटीर पासत एतिया सोनू और चार्ली को लोई जाबो।
0: गुवाहाटी से मैं पूरा मेघालय एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ट्रैवल करूंगा थोड़ा, एंड फिर इसके बाद अरुणाचल, एंड देन फिर मेरा ये जर्नी फिनिश होगा एंड मैं एनिमल शेल्टर बनाने के लिए जाऊंगा फिर इसके।
1: सोनू बिहार ले उभति गई पथर कुकुरर बाबे आश्रय स्थल निर्माण जी सपन आछे, এই সপোন পূরণৰ ক্ষেত্ৰত এই যাত্ৰাৰ সময়ত বিভিন্ন জনে নিশ্চয়কৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, সেই সম্পৰ্কে অলপ জানিব বিচাৰিছো।
0: ফাণ্ড ৰেজ মে আবি মেৰা লগভগ মুঝে টাৰ্গেট হে কি মে 20 লাখ তক ৰেজ কৰো ফাণ্ড, আবি 6 লাখ কমপ্লিট হো গয়ে, লেকিন আবি জিতনা ভি য়ে জৰ্নী কৰতে তক কমপ্লিট কৰতে কৰতে জিতনা ভি ফাণ্ড ৰেজ হোতা হে মে উসি মে স্টাৰ্ট কৰুঙ্গা, ক্যুকি স্টাৰ্ট কৰনা জৰুৰী হোতা হে, ফিৰ বেটাৰ ধীৰে ধীৰে হো জাতা হে, তো মে স্টাৰ্ট কৰ লুঙ্গা देन फिर लोग जुड़ेंगे। तो मैं ये जर्नी से बस लोगों को जोड़ रहा हूँ कि हाँ मेरे मिशन में जोड़ो एंड फिर वो बाद में भी हेल्प कर सकते हैं वैसा है।
1: सोनू इतिमध्ये उल्लेख करिसे जे बिहारर ओलिए गोलिए पथत बहुत कुकुर देखिबले पुआ जाय, बहुतर होयतु ए जीवजंतुर प्रति विशेष मरम ना थाकिबो पारे, कोनबाय होयतु एनेका जीवजंतुक बेया व्यवहार करिबो पारे, अनिष्ट साधन करिबो पारे, एनेका चिंता किसुमान निश्चय मनलै आहिसिल आरु सेइ कारणे ए यात्रार आरम्भनि होयसिल, किन्तु चार्लिक लग पुआर पासत এই চিন্তাটো আৰু বেছি গাঢ় হৈছিল নেকি?
0: পেলে থা মেৰা কি বহুত প্যাৰ কৰা থা মুঝে দাদাজী 5 ৰুপিয়া 10 ৰুপিয়া ভি দেতে থে তো মেৰে ডগ্ছ কো বিস্কিট খিলা দেতা থা, বহুত আচ্ছে লাগতে থে মুঝে ডগ্ছ, লেকিন কৰনা থা বহুত কুছ, লেকিন ও বিলিভ নাই থা কি মে কৰ পাউঙ্গা, লেকিন চার্লি জব মেৰে লাইফ মে আই না তো এক বিলিভ হো গয়া কি মে কৰ সকতা হু, কুছ ভি কৰ সকতা হু এসা কৰকে, এণ্ড মে এনিমলস কে লিয়ে বহুত অ্যাটাচ হো গয়া জব ইসকো দেখা, তো অর ভি লাগা কি ইসকে জেসে কিতনে সারে ডগ্স হোঙ্গে জো ঘর নেই মিলতা উনকো, ট্রিটমেন্ট নেই মিল পাতা, জেসে ইয়ে ভি মুঝে अगर अभी ये मेरा कितने डॉग्स का ये लाइफ चेंज किया, मेरा भी लाइफ चेंज किया, अभी इसको कोई रोड पे ऐसे ही मैं नहीं देखता तो ऐसे ही मर जाती, तो मैं सोचता हूँ इसके जैसे कितने सारे डॉग्स होंगे जिसको मेरे जैसा सोनू नहीं मिलता रहेगा, तो मैं उसके लिए सोनू वो बनना चाहता हूँ जो मेन टाइम पे उनका हेल्प कर पाए, रेस्क्यू कर पाए, तो मैं इसलिए भी खुद पे बिलीव हो गया कि मैं करूंगा एक दिन जरूर शेल्टर खोलूंगा, एनिमल शेल्टर जरूर, एंड वो जल्दी पूरा होने वाला है, एंड ऐसे बिहार में বহুত।

0: होता है, हर जगह डॉग्स हैं वहाँ पे, और लोग बहुत कम लोग हैं जो प्यार करते हैं डॉग्स के साथ, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ के लोग भी वैसा है, मतलब बहुत गरीबी में जी रहे हैं वैसा। लेकिन वो एक होना चाहिए दिल से कि प्यार होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। असम में मैं पूरा ट्रैवल किया, हर लोगों के पास मतलब ऐसा है डॉग्स है, बहुत लोगों के पास, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास डॉग्स नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत एनिमल को बहुत पसंद करते लोग, हर जानवर को। बहुत अच्छा लगा असम में ट्रैवल करके। तो मैं बोलूंगा अगर असम जैसा भी बिहार हो जाता है एनिमल्स के प्रति, तो बहुत ही अच्छा होगा, कि हर जगह शेल्टर खोलने का भी नहीं होगा वैसा।
1: सोनू चार्लिक लगत लई एक दीघलिया समय
0: 2 साल 1 महीना हो गया उसे।
1: ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা হৈছে, বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ পোৱা হৈছে, বাটত এনেকৈ গৈ থকা অৱস্থাত কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? চাৰ্লি লগত থকাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, বা কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি?
0: प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ऐसा ऐसा हमारे बॉन्ड हो गया ना चार्ली का। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, प्रॉब्लम बहुत होता है, जैसे डॉग्स को देख के वो चार्ली भी रिएक्ट करती है समटाइम, लेकिन चार्ली बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब दूसरे डॉग्स के साथ खेलने को जाती है, उछल कूद करती है, जो फ्रेंडली है डॉग्स उसके साथ खेलेगी, जो अगर अग्रेसिव डॉग है उससे भाग के आ जाएगी मेरे पास। लोग से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग कभी कभी स्टे करने नहीं देते हैं, होटल ढाबा के बाजू में टेंट भी नहीं लगाने देते, पेट्रोल पंप पे भी। तो लेकिन ये सब मैं झेल अच्छा है, मना करने से भी ठीक ही लगता है कि कोई नहीं आगे जाके किसी लास्ट लास्ट तक कुछ बेटर ही हो जाएगा। लेकिन हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया ना, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में इतना मतलब चार्ली ने होशियारी दिखाया, मैं बेहोश हो गया था। मैं पहले महाराष्ट्र का बात है, महाराष्ट्र गोवा हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहां पे मैं बेहोश हो गया। एंड उससे जस्ट पीछे ही हम लोग 400-500 मीटर पीछे ही ब्रेकफास्ट करके वड़ा पाव एंड चार्ली को कुछ खाना वाना खिला के निकले ही थे, तभी एक्सीडेंट हो गया मेरा। एंड मैं बेहोश, एंड मेरा पैर में ऐसे गड्ढे हो गए थे, यहाँ पे पूरा गड्ढे हो गए थे ऐसा कि पूरा ब्लड आ रहा था। तो चार्ली क्या, चार्ली पैर एक कैरेट में थी है, उसको बांध के भी नहीं रखता हूँ, तो वो उछल के वो तो गिर गई, मैं बेहोश, मेरा साइकिल भी उधर। एंड चार्ली क्या कि पीछे ढाबा पे भाग के गई एंड वहां पे भूख रही थी। एंड वो लोग भी समझ गए कि अभी तो ये लोग गया है, वो लोग आगे जैसे ही बढ़े मैं दिखाई दिया एंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एंड जब मैं वहां से आया ना, तो मैं पूरा वो वहां पे रोया जब मैं हॉस्पिटल से आया। एंड हॉस्पिटल का भी अलग सीन था, वो लोग टाके देने वाले थे, लेकिन मेरा वहां जान पहचान को उस वक्त कोई नहीं था, उनको बोला टाके मत दो। फिर मैं हॉस्पिटल से आया एंड चार्ली मेरे से इतना प्यार की, पूरा लिए, कितना हैप्पी। एंड उस वक्त मैं सिर्फ रोए जा रहा था कि एट दिस मोमेंट मेरे पास कोई नहीं है सिर्फ इसके अलावा जो मेरा ख्याल रख सके। तो इसलिए भी बहुत ऐसा ऐसा कहानियां हैं जो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग कर देती है। एंड इसलिए भी चार्ली कितना भी बदमाशी करे, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है, ऐसा करके मैं मानता हूँ। और इंजॉय करता हूँ मैं उसके साथ ट्रैवल करना, जर्नी करना, कि लोग मिलेंगे कुछ लोग बुरे जो हमें बोलेंगे कि नहीं इधर मत खड़े रहो, डॉग को उधर लेके जाओ, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं, मैं उनको ध्यान रखता हूँ। छोड़ो, फिर से थोड़ी पैदा लेंगे यहाँ पे, तो जो भी अच्छा हो सके वो करना है, फिर एक दिन चले ही जाना है वही। तो मैं यही बोलता हूँ, बस जिंदगी जियो, कुछ जमा करने तो आए नहीं हो यहाँ पे, तो जितना अच्छा कर सकोगे करो।
1: अगर चार्ली कहीं इधर उधर चला भी गया, उसके बाद आप स्कूटर जब स्टार्ट करते हैं, तो आ जाता है वो?
0: हाँ, वो इसका ये है कि मेरे साथ रहते रहते मैं अकेले, मैं 21 ईयर्स का हूँ, बहुत लोग बुरे भी मिलते हैं, तो ये इतना प्रोटेक्टिव है, मेरा बैग छूने नहीं देती है, मुझे कोई जस्ट टच भी ऐसे गलत से करेगा ना, जैसे कोई मार रहा हो, तो वो बहुत रिएक्ट करती है कि कोई भी डर जाए। एंड कहीं भी उसको मैं छोड़ देता हूँ कि वो मुझे फॉलो करती है पूरा, जैसे स्कूटी में बोलूंगा बैठ जाओ, या जैसे स्कूटी स्टार्ट करूंगा, वो कितना दूर भी रहे वो आ जाती है। पहले साइकिल पे था कि साइकिल में जैसे ही चलाया वैसे ही पीछे आ जाएगी वो भाग के, कितना भी उसको रोकने का ट्राई करो वैसा है। बहुत सही है, मतलब कुछ भी अगर मैं सामान छू दिया, उसको बोला है कि मत छू इसको, कोई नहीं छूना चाहिए इसको, छूने नहीं देगा वैसा है। अभी 2 ईयर्स 1 मंथ हो गए, किसी को भी बाइट नहीं किया, लेकिन वो डराता ऐसा है कि वो कोई भी डर जाएगा, तो ये बेस्ट है।
1: आज बहुत श्रोताए अनुष्ठानी शुनी আছে, কোনোবাই FM-ত শুনি আছে, কোনোবাই নিউজ অন AIR অথবা AIR ৰেডিঅ' এপত শুনি আছে, আমাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী ফেচবুক পেজ AIR গুৱাহাটীটো শুনি আছে। গতিকে শ্ৰোতাসকলক কি ক'ব বিচাৰিব, যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত? এই পৃথিৱীখন কেৱল আমাৰেই নে, জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি

0: সকলোৰে মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ কিমান এক প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে আজি শ্ৰোতাসকলক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব?
1: মই ইয়েই আপীল কৰিব চাওঁ, বি কাইণ্ড টু এনিমেলছ, মতলব মত কৰো আপ ৱো জো মাৰতে হো য়া পিটতে হো এণ্ড আপ খানা ভি নহীঁ দে ৰহে হো তো মতলব ৱো আপচে কুছ মাংগ ভি নহীঁ ৰহে হো বছ ৰাস্তে পে হে। अगर आप देख रहे हो किसी को मारते हुए तो चुप मत बैठो। आप वहाँ पे अगर एक बार उसको डांट भी दोगे, आवाज भी उठा दोगे तो नेक्स्ट टाइम से शायद में भी नहीं करेगा। तो आप चुप मत बैठो। यहाँ पे तो अच्छा है, लोग बोलते हैं कम से कम, तो अलग अलग जगह से मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अगर आप कोई भी क्रूल्टी देख रहे हो तो वहाँ पे चुप मत बैठो, कुछ भी एक्शन लो, लेकिन उसको बोलो, समझाओ कि ये गलत है, नहीं करो। एंड यही है कि आप मत देखो, मारो भी मत एंड देखो भी नहीं किसी को मारते हुए। बोलो वहाँ पे एंड अच्छा से ट्रीट करो। आप अगर कुछ बिस्किट्स है, कुछ अगर आप देख रहे हो आसपास किसी को नीड है, तो बस एक एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। आप छोटा सा एक्शन लेते हो ना, जैसे कोई एनिमल्स रोड पे है एंड आप कुछ कर पाओ उसके लिए, तो बहुत अच्छा है। वो हमेशा के लिए आपको एक थैंकफुल रहेगा। भगवान भी ऊपर से देखता है, आपको जरूर आशीर्वाद देगा। तो यही बोलना चाहूंगा, आप किसी को इग्नोर करके मत जाओ। अगर कोई स्ट्रे डॉग या कोई भी एनिमल्स रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो इसको इग्नोर करके मत जाओ। आप कुछ भी वहाँ पे रुको, किसी को कांटेक्ट करो, या खुद भी उसको जैसे अच्छा से ट्रीटमेंट करवा सकते हो तो करवाओ, या खुद भी कुछ कर सकते हो पट्टी, ये सब नॉलेज इकट्ठा करो। हर कोई सीखो कि एनिमल्स के प्रति, एनिमल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो। अगर कोई एक्सीडेंट में देगा तो कुछ ना कुछ सीखो आप, एंड कहीं भी देखो तो वो काम आएगा। क्योंकि मैं अभी जर्नी में कम से कम 150 डॉग्स को ट्राई किया हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकूँ। बहुत सारे डॉग्स को रोड के साइड पे जो मरा हुआ था, कम से कम उसको गार्ड तो नहीं सकता क्योंकि मैं जर्नी बोलता हूँ, तो कम से कम साइड ही कर दो उसको ह्यूमैनिटी के नाते। तो यही बोलता हूँ, आप कोई भी एनिमल्स को देखो जिसके साथ बुरा हो रहा है, तो आप उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो एंड शांत वहां से गुजर मत जाओ कि कोई और देख लेगा। नहीं, आप ही हो जो वहां से गुजरो, वैसे ही बहुत लोग गुजर जाएंगे, तो आप ही एक्शन लो एंड थोड़ा ठीक करो उसको। वही बोलूंगा।
0: सोनू खसा कोई भल लगिल ए समय खिनि आमी कथा पातिलु एक सपनर कथा, पथत थका जीवबुरर सुरक्षार कथा, आश्रय स्थल निर्माणर कथा, सु चिकित्सा प्रदानर कथा। आमी की करिब पारु সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিলো। 2024 চনত যি যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এতিয়া অসমৰ পৰা মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেকৈ যাত্ৰা আগবাঢ়িব, আকৌ অসমলৈ উভতি আহিব, তাৰ পাছত বিহাৰ নালন্দালৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত আশ্ৰয়স্থল নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। হয়তো এই যাত্ৰাত যি ধনৰাশি গোটোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল সকলোখিনি হয়তো নহ'ব পাৰে, কিন্তু যি এক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে, যেন এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছো। এই পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় ভৱিষ্যতে বিভিন্ন কামত সহযোগ কৰিব, এয়া এক ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। আজি এই প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি শ্ৰোতাসকলক অৱগত কৰিলো। আমি আশা কৰিছো যি সপোন লৈ নালন্দা বিহাৰৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এই যাত্ৰাৰ সফল পৰিসমাপ্তি হওক। আকাশবাণীক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা লগতে সকলো শ্ৰোতাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছো।
1: থ্যাংক ইউ সো মাচ।
0: আৰু আহ্বান জনাইছো আমাৰ সকলো শ্ৰোতাক, আহক আমি জীৱকুলৰ প্ৰতি, আমি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সকলো দায়বদ্ধ হওঁ।

0: ইমানপুৰ শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম অফৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া সমাচাৰ সন্ধিয়া দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे।

0: श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद

0: महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 पर बंद हुआ।